0: अपना ही।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। श्री तो लाम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणनक क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में कहा कि जीवाश्म ईंधन के सर्वोत्तम विकल्पों के उपयोग और जनता के बीच इसके प्रचार प्रसार के लिए व्यापक शोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण हो रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए की लागत से देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ होने की संभावना है।
2: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना।

लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवे चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी प्रदान की। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की टिप्पणियों को अराजक बताया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान और मतगणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव परिणाम आने के बाद का माहौल भी शामिल है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई विधानसभाओं के गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसे जहाजों की सुरक्षित निकासी की योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोका जाएगा। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम का आज सुबह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया जाएगा। वे राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में श्री तो लैम के साथ बैठक करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। श्री तो लैम आज 56वां सप्रू हाउस व्याख्यान भी देंगे। आज की वार्ता द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने और भारत वियतनाम सहयोग के नए अवसर खोलने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री तो लैम कल 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और इसके साथ ही इन राज्यों में औपचारिक रूप से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है और नई सरकार के गठन का रास्ता अब साफ हो गया है। आयोग ने बताया कि मतदान से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया वैधानिक ढांचे के अनुरूप स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई।

0: पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुश्री बनर्जी की इन टिप्पणियों को अराजक बताया है। श्री पात्रा ने कहा कि ये टिप्पणियां चिंताजनक हैं, क्योंकि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण सदैव शांतिपूर्ण तरीके से होता आया है।
1: ममता बनर्जी जी ने जो कहा है और जो किया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह आघात लोकतंत्र पर है, यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर है। ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं है और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में भी विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के लिए नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। उधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। केरलम में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने एक डॉक्टर समेत 3 लोगों के खिलाफ आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप पत्र दायर किया है। इस षड्यंत्र में सार्वजनिक स्थानों पर जैविक विष का इस्तेमाल करके सामूहिक नरसंहार करने की योजना थी। हैदराबाद के डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन और उत्तर प्रदेश के सह आरोपी आजाद तथा मोहम्मद सुहेल को गुजरात के अहमदाबाद की विशेष NIA अदालत में पेश किया गया है। रिसिन अरंडी के बीजों से हासिल एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है, जिसे रासायनिक हथियार की अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है। मामला मूल रूप से गुजरात आतंकरोधी दस्ते द्वारा नवंबर 2025 में डॉक्टर मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति निपुण भारत मिशन के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें माता पिता, शिक्षकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्य को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। वे नई दिल्ली में आयोजित एक निजी ऑटो सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1,60,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है।
2: ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से चल रहा है। सेकेंड थिंग रिसर्च भी चल रहा है। ये बायो बिटुमिन तैयार किया, अब इथेनॉल से आइसोबिटेनॉल तैयार हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अभी बायोमास से बायो CNG बनाने का काम। तो अब ये किसान एक प्रकार से अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता, और आगे अब हम किसानों को हाइड्रोजन दाता बनाना चाहते हैं। हाइड्रोजन इज द फ्यूल फॉर द फ्यूचर।
0: पंजाब में अमृतसर और जालंधर में कल रात सेना और BSF परिसरों के बाहर हुए 2 धमाकों के बाद सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। हालांकि इन धमाकों से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मामले की जांच

0: जारी है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में दूसरी रोजगार कार्य समूह की बैठक आज तिरुवनंतपुरम में शुरू होगी। दो दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि श्रम, रोजगार और श्रमिक कल्याण के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देश सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाने, श्रम बाजारों को औपचारिक रूप देने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और संयुक्त अरब अमीरात हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने की घोषणा की थी। श्री ट्रंप ने कहा था कि दुनिया भर के देशों ने इस जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए सहायता का अनुरोध किया था।
1: ये हमले अमेरिका द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने के कुछ ही घंटे बाद 4 मई को शुरू हुए, जो खाड़ी में फंसे वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकालने के लिए सैन्य सुरक्षा के साथ चलाया जाने वाला अभियान था। ईरान, जिसने फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद से जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, उसने अमरीकी नौसेना के जहाजों और अमरीकी संरक्षण में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके जवाबी कार्रवाई की। इसके बाद उसने संयुक्त अरब अमीरात पर निशाना साधते हुए नागरिक स्थलों और सुविधाओं पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 4 ड्रोन दागे। वायु रक्षा प्रणालियों ने अधिकांश मिसाइलों को रोक दिया, लेकिन फुजैरा में एक तेल संयंत्र पर ड्रोन हमले से आग लग गई, जिसमें 3 भारतीय नागरिक मामूली रूप से घायल हो गए। कई देशों ने तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया और बढ़ते तनाव के लिए पूरी तरह से तेहरान को जिम्मेदार ठहराया। कई देशों ने यह भी संकेत दिया है कि वे ईरान के प्रति अपने दृष्टिकोण का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। हालांकि व्यापक तेल बाजारों में भी तंगी बनी हुई है। संघर्ष शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा पंजाब किंग्स से। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों, जनहित याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी और बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद के नाटकीय घटनाक्रम से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। देशबंधु की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। अखबार ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर सहित बॉक्स में छापा है। 3900 करोड़ की लागत से 2 नई सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी। दैनिक भास्कर ने इसी खबर को विस्तार से प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, केंद्रीय कैबिनेट के 10 फैसले। हिंदुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाए जाने और गन्ने का लाभकारी मूल्य 10 रुपये बढ़ाने को सुर्खियों में जगह दी है। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, जनहित याचिका अब पैसा हित याचिका बनी। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, एससी बोला, गैर आस्थावान लोगों की ओर से मंदिर की परंपराओं को चुनौती देना गंभीर मुद्दा। दैनिक भास्कर ने संपादकीय को शीर्षक दिया है, दीवारों पर लिखी इबारत पढ़ने से चूक गई टीएमसी। पत्र की राय में टीएमसी के मतदाता भाजपा की ओर चले गए, जिसे समय रहते टीएमसी भाप नहीं सकी। पत्र ने बंगाल के घटनाक्रम को ही शीर्ष समाचार बनाते हुए लिखा है, बंगाल में हिंसा, ममता बोली।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और एफडी के ढेर सारे विकल्प।
0: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, म्यूजिकली योर्स। मैं हूं आपका अपना आरजे दोस्त रेहान। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मस्त मुंबई कार्यक्रम लेकर मैं हाजिर हूँ और हमारे साथ इस वक्त हैं हमारे को होस्ट रॉबिन। रॉबिन, कैसे हैं आप?
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबको मेरा नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सबको।
2: तो चलिए बिना किसी देर के आगाज करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ मस्त मुंबई कार्यक्रम का।

0: तो दोस्तों, अभी आपने एक गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत सुना के और सली मर्चेंट की खूबसूरत आवाज़ों में। फिल्म का नाम इकबाल। 8:00 सुबह के 46 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई। और जैसा कि आप जानते हैं, आज है बुधवार और मस्त मुंबई कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आज हम जो है मुंबई के मतवाले के तहत लोकल ट्रेन और उससे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों की बात करते हैं। रॉबिन, जैसा कि मुंबई के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी रुकता नहीं है, थकता नहीं है, और इसकी दिल की जो धड़कन है यहाँ की लोकल ट्रेनें हैं।
1: जी,
0: क्या कुछ याद आता है जब भी लोकल ट्रेन का जिक्र होता है?
1: जी देखिए, मुंबई जो है ना, एक शहर नहीं है, एक एहसास है, और इस एहसास की धड़कन है हमारी लाइफलाइन मुंबई लोकल ट्रेन। सुबह की पहली ट्रेन से रात की ट्रेन तक हर डिब्बे में कहानियां सफर करती हैं। कोई ऑफिस के लिए भाग रहा है, कोई अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहा है, तो कोई अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। बारिश हो, गर्मी हो, मुंबई लोकल चलती रहती है। शायद इसीलिए इसे शहर की धड़कन कहते हैं, क्योंकि जब तक ये चल रही है, मुंबई चल रही है।
0: बिल्कुल रॉबिन, आपने सही कहा। और एक चीज़ और है, यहाँ जब भी स्टेशन की बात होती है मुंबई के लोकल की, तो हर एक स्टेशन अपनी एक अलग कहानी जो है बयां करता है। और सुबह होते ही सूरज की किरणें निकलती ही नहीं है, उससे पहले ही जो है लोकल ट्रेन की सीटियाँ मुस्कुराने लगती हैं, और हम जल्दी जल्दी से अपने घरों से निकलते हैं, ऑफिस के लिए भागते हैं, और लोकल ट्रेन पकड़ कर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं। तो सुबह होते ही ये ट्रेन जो है हमें सीटी बजाकर बुलाने
1: और बुलाती भी है।
0: जी जी। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में दोस्त फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गीत। उम्मीद है आप इसे जरूर पसंद करेंगे।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमाया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: तो इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:54 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल म्यूजिकल और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रेहान, और मेरे साथ हैं इस वक्त रॉबिन। रॉबिन
1: जी,
0: जब भी हम लोकल ट्रेन की बात करते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत गीत अभी जो हमने श्रोताओं को सुनवाए, लोकल ट्रेन को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करता है, और उतने ही उम्दा तरीके से जो है ये गीत लिखा भी गया है
1: जी।
0: और जब भी हम लोकल ट्रेन या ट्रेन की बात करते हैं और हिंदी फिल्मों का जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की कनेक्टिविटी जो है आपस में बन जाती है, क्योंकि कई ऐसे सीन्स हैं, कई ऐसे गाने हैं जो आइकॉनिक हैं, कल्ट क्लासिक हैं, वो लोकल ट्रेन या यूं कहें कि ट्रेन पर फिल्माए गए हैं, और जब भी हम उन गानों को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी भी आ जाती है और सीख भी मिलती है इस तरह के गानों से। और जब हम दादा मुनि की बात करते हैं
1: जी,
0: तो दादा मुनि की जब तस्वीर हमारे सामने आती है और ट्रेन का जिक्र होता है, तो उनका कल्ट क्लासिक गाना याद आ जाता है। क्या कहेंगे आप उस गाने
1: जी,
0: के बारे में?
1: बिल्कुल, मेरा भी वो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, मतलब मैंने बचपन में बहुत सुना है वो गाना, रेलगाड़ी जो गाना है, और जो वो जो मतलब वो गाना भी आज जो फिल्माया गया उसमें बच्चे भी उनके साथ डांस कर रहे हैं, और जो उनकी एनर्जी उस गाने में है वो आप सुनते हैं तो फील करते हैं, तो
0: इसीलिए वो दादा मुनि है
1: जी जी।
0: तो चलिए अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं अशोक कुमार की आवाज में ये फिल्म का गीत है जिसके बोल हैं रेलगाड़ी।
2: आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागे, सारी सीधी लाइन में चलना, आंखें दोनों नीचे रखना, बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ ना पाए, आओ बच्चों रेल चलाएं। सुनो रे बच्चों, टिकट कटाओ, तुम लोग नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी, आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ, मुन्ने तुम्हारा इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला, मोहन सोहन जादो माधो, सब पैसेंजर सब पैसेंजर, रेडी, एक

रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक।

मंगल की हार, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी रेलगाड़ी, बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक, रुक।

धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तालेगांव मालेगांव मालेगांव तालेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मतलबम लिपटम लिपटम मतलबम उंगोल निर्दिगोल निर्दिगोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद शोरनूर कोटनूर शोरनूर कोटनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोल रुक रुक।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत ये अभी आपने सुना, उदित नारायण, हरिहरन और कैलाश खेर की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा जावेद अख्तर ने और धुन तैयार की AR रहमान ने। फिल्म का नाम स्वदेश। ये एक ऐसा गीत है जो हमें काफ़ी प्रेरित करता है अपनी लाइफ में संघर्ष करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। रॉबिन, जब भी हम बात लोकल ट्रेनों की करते हैं तो आजकल की लाइफ काफ़ी बदल गई है, क्योंकि एक नई जनरेशन जो है हमारे सामने है, जिसे जेंजी कहा जाता है। और जेंजी जब ट्रेनों में सफ़र करती है तो टेक्नोलॉजी के इस दौर में उसके हाथ में ज़रूर सेलफोन होता होगा, और वो सफ़र कैसे करते हैं जब लोकल ट्रेन में वो चढ़ते होंगे अपने घरों से, तो आम लोगों से वो काफ़ी अलग होते हैं, क्योंकि आम लोग तो बस वही अपनी ही धुन में रहते हैं कि कितनी जल्दी ऑफिस पहुंचा जाए और कहीं बॉस की डांट ना मिल जाए। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया है लोकल
1: जी
0: ट्रेन?
1: मैंने लोकल ट्रेन में ऑब्जर्व किया है कि मैंने भी देखा है कि जो यंग जनरेशन के जो कुछ लोग हैं ना, वो गेट पर लटक के हवा एंजॉय करते हैं और फिर ना वो
0: काफी जो है

0: खतरा साबित
1: बिल्कुल
0: होता है
1: खतरा
0: कभी
1: है,
0: कभी।
1: मतलब वो अपने रील्स बनाते हैं
0: जी
1: और मतलब इतनी स्पीड में ट्रेन चल रही है और वो करते हैं ऐसा, और कोई है जो फोन पर लाउड स्पीकर में अपनी पूरी लाइफ डिस्कस कर रहा है, कोई रील्स देख रहा है, और कोई जो है अपनी ख्यालों में खोए हुए हैं।
0: या फिर हम रेनबो के जरिए हम ये यात्रियों से और लोगों से
1: जी
0: अपील करेंगे कि वो ऐसी चीजें ना करें,
1: हाँ,
0: कि लाइफ के साथ जो
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल
0: खिलवाड़ ना करें, सुरक्षित यात्रा करें। और रेलवे पुलिस और सरकार या प्रशासन की भी यही कोशिश
1: जी,
0: रहती है
1: जी,
0: कि
1: जी,
0: लोग सुरक्षित यात्रा करें, और उसके लिए समय समय पर तमाम तरह की जो प्रावधान है, जो गाइडलाइन है, वो जारी किए जाते हैं। तो बहरहाल जब भी ट्रेनों की बात होती है और फिल्मों के गीतों की बात होती है, तो सबसे पहले क्या जहन में आता है, क्या दिल से का जो गाना है छैया
1: जी
0: छैया,
1: जी
0: उसे आप सुनना चाहेंगे?
1: बिल्कुल, देखिए अगर ट्रेन की बात हो रही है और वो गाना ना चले तो ये तो थोड़ा सा नाइंसाफी है, तो वो गाना तो हमें प्ले करना चाहिए।
0: चलिए सुखविंदर सिंह सपना अवस्थी और साथियों की आवाजों में सुनते हैं दिल से फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

0: डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

9:16 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं।

इस वक्त आप सुन रहे हैं मस्त मुंबई, और मस्त मुंबई में हम बात कर रहे हैं मुंबई के लोकल ट्रेन के किस्से। और हमारे साथ इस वक्त हैं आरजे रॉबिन।

0: परिणीता फिल्म का यह गीत अभी आपने सुना 9:22 और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर। मैं इसके लिए और हम बात मुंबई मस्त में कर रहे हैं लोकल ट्रेन और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियों की। रॉबिन, और क्या याद आता है, क्या कैसा अनुभव होता है जब हम लोकल ट्रेन में जाते हैं और लोगों को देखते हैं, बातचीत करते हैं, तो कौन सी धुन में वो रहते हैं? क्या ऑफिस जाने की ही जल्दबाजी रहती है या फिर और कुछ वहाँ पर दिखाई देता है? एक नया कल्चर भी सामने आता है क्योंकि देश के कोने कोने से लोग लोकल ट्रेन में आते हैं और अपने अपने ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए। तो ये एक कल्चरल के हिसाब से, सांस्कृतिक आदान प्रदान के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसका भी एक मिलाप देखने को मिलता है लोकल ट्रेनों में।
1: जी बिल्कुल, वो तो मिलता ही है। मतलब डिफरेंट टाइप के लोग, मतलब सबकी जात अलग है लेकिन सब लोग साथ चलते हैं। लेकिन इसके अलावा ना, मैंने कुछ दृश्य देखे हैं बहुत कमाल के। जैसे कि जब किसी को सीट मिलती है ना, तो वो ऐसे फील करता है जैसे वो राजा बन गया है और जो डोर पे जो लोग खड़े होते हैं उनको देख के तो लगता है कि वो स्टंटमैन है। वो खुद को स्टंटमैन समझते हैं एकदम। मतलब जैसे कि मैंने पहले बताया था,
0: मुंबई की ताजी हवा लेने के लिए
1: और रील्स बनाते हैं जैसे मैंने कहा था, तो वो मतलब वो स्टंटमैन की तरह बिहेव करते हैं। और जब कोई नया आता है पैसेंजर, तो कोई पूछता है कि ट्रेन में वो कि उसे क्या ये ट्रेन अंधेरी जाएगी, तो सब लोग बोलते हैं एक साथ, नहीं नहीं जाएगी। तो मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, लेकिन सब लोग आपस में मिल के मतलब हेल्प भी करते हैं, बहुत लोग आपकी सहायता करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है लोकल ट्रेन में। तो कमाल की मुंबई ट्रेन है और उसके कमाल के किस्से हैं।
0: मुंबई में जब भी कोई नया आता है और लोकल ट्रेन में चढ़ता है तो उसे अजीब सी फीलिंग होती है, लेकिन वो धीरे धीरे ढल जाता है मुंबई की लोकल में यात्रा करने के लिए, और बाद में फिर वही उस्ताद बन जाता है कि कैसे चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, फिर लोगों को वो सिखाता रहता है।
1: पहले तो लगता है ना कि इतनी भीड़ है, हम कैसे घुसेंगे,
0: कैसे घुसेंगे।
1: जब जाते हैं अंदर तो फिर ठीक है, इट्स नॉर्मल, वो नॉर्मल बात है। और जो लोग भी काफी हेल्पफुल हैं तो अच्छा लगता है, उसमें बुरा नहीं लगता।
0: तो चलिए कार्यक्रम के

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। म्यूजिकली ओस 9:30 हो चुके हैं और उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। और आज है 6 मई, तो लोकल ट्रेनें के अलावा जो आज का ये दिन है, 6 मई का दिन, वो अगर इतिहास की बात करें तो कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम आज के दिन की बात करें, जो बड़ी घटनाएं 6 मई को हुई थी, 6 मई 2010 को मुंबई 2611 आतंकी हमले के दोषी कसाब को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और इसके अलावा गांधी जी को 6 मई 1944 को पुणे के आगा खां पैलेस से रिहा किया गया था, और ये उनके जीवन की अंतिम जेल यात्रा रही थी, ऐसा कहा जाता है। और इसके अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 6 मई 1857 को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फैंट्री की पूरी रेजिमेंट को भंग कर दिया था, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। तो 6 मई की ये प्रमुख घटनाएं थीं, और अब ये खूबसूरत गीत सुनते हैं और उसके बाद इस प्रोग्राम को यूं ही जो है एंजॉय करते रहिए। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं इसके लिए यूर्स।

9:36, 6 मई का जिक्र हम कर रहे हैं तो आज बर्थ एनिवर्सरी है हिंदी सिनेमा के दिग्गज संगीतकार रहे बुलो सिरानी का। बुलो सिरानी को भला कैसे भुलाया जा सकता है, संगीत के प्रति उनका जो बहुमूल योगदान है हिंदी सिनेमा के लिए। बुलो चंदीराम रामचंदानी, इनका पूरा नाम जिन्हें हम बुलो सिरानी के नाम से जानते हैं, बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे और उनके पिता भी अपने समय के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। और बुलो सिरानी शाह लतीफ की सूफी शायरी सुना करते थे और उन्हें सौभाग्य से नूर जहां द्वारा मास्टर गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में गाए गए गीत तू कौन सी बदली में रिकॉर्डिंग में शामिल होने का मौका मिला था, ऐसा कहा जाता है। और उनकी मुलाकात यहां पर गीतकार डीएन मदोक से हुई और उसके बाद उन्हें मुंबई आने का न्योता मिला। मुंबई में उन्होंने खेमचंद प्रकाश और ज्ञान दत्त के सहायक के रूप में काम किया और इसके बाद धीरे धीरे वो फिल्मों में संगीत देने लगे। 1943 में आई फिल्म पैगाम के 6 गाने भी उन्होंने कंपोज किए और इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपने संगीत के जादू से लोगों का दिल जीता। बहरहाल कार्यक्रम के इस मोड़ पर सुनते हैं शान उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ों में ये खूबसूरत गीत।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: तो दोस्तों 9:46 हो चुके हैं सुबह के और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकली योर्स। बात हम लोकल ट्रेन और उसके कुछ मजेदार किस्सों की कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं RJ रॉबिन। रॉबिन, क्या कुछ याद आता है? लोकल ट्रेनें हमें काफ़ी कुछ सीख देकर भी जाती हैं, लाइफ की और जीवन के संघर्ष की भी।
2: जी बिल्कुल, ये जो मुंबई की लोकल ट्रेन है हमें सिर्फ ट्रैवल नहीं कराती है, ये हमें कुछ सिखाती भी हैं, जैसे कि शेयर करना, बैलेंस करना और केयर करना। अब आप पूछिए कैसे
1: कैसे?
2: देखिए, शेयर हम जब करते हैं तो जब आप जाते हैं मुंबई लोकल में तो कभी लोग आते हैं कि थोड़ा सा साइड हो जाइए, हमें सीट चाहिए बैठने के, तो हम सीट को शेयर करते हैं। बैलेंस हम तब करते हैं जब बहुत भीड़ होती है, तो आप डोर के पास खड़े हुए हैं और बैलेंस कर रहे हैं और चल रहे हैं लोकल ट्रेन में, तो वो बैलेंस आप सीखते हैं। और केयर तब जब आप देखते हैं कोई बुजुर्ग महिला या कोई पुरुष है, आप उनके लिए खड़े हो जाते हैं, आप उनको बोलते हैं कि आप आइए मेरे सीट पे बैठिए, तो आप केयर करना भी सीखते हैं। तो इसीलिए तो इसको मुंबई की लाइफ लाइन कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ हमें सिखाती भी है।
1: कुल मिलाकर कहें तो लोकल ट्रेनें हमें जीने का नया सलीका सिखाती हैं और काफ़ी कुछ देकर भी जाती हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी से भी जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हम दैनिक जो है इस्तेमाल में हम लोकल ट्रेनों का यूज़ करते हैं, और उसके अलावा और भी दूसरे काम लोकल ट्रेनों से होते हैं। लेकिन अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ की लाइफ लाइन लोकल ट्रेनें ही
2: जी बिल्कुल।

तो रॉबिन, चलते चलते मस्त मुंबई कार्यक्रम में हम आज के दिवस की बात कर लेते हैं कि आज कौन कौन सा दिवस जो है मनाया जा रहा है। वैसे कई विषयों में लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो आज यानी कि 6 मई को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल नो डाइट डे, और इसके अलावा राष्ट्रीय पेय दिवस और राष्ट्रीय नर्स दिवस भी आज जो है मनाया जा रहा है। हालांकि अगर राष्ट्रीय नर्स दिवस की बात करें तो ये पूरे हफ्ते सेलिब्रेट होगा, 6 से 12 मई तक जो है राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। तो चलिए अब सुनते हैं दिल चाहता है फिल्म का ये गीत, और उसके बाद 10 बजे होंगे प्रमुख समाचार, और 10 बजे के बाद 10:02 पर कार्यक्रम लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। यूँ ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर। मैं इसके लिए और

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी, मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

0: तो रॉबिन, चलते चलते कुछ क्लोजर पॉइंट देना चाहेंगे लोकल ट्रेनों से
1: जी
0: संबंधित?
1: बिल्कुल बिल्कुल। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आपने मुंबई के लोकल ट्रेन में सफर किया है तो आपने जिंदगी को करीब से देखा है। ये लाइन मैंने कहा है और आप भी इससे एग्री करेंगे?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ ही ये पहला सेगमेंट जो है मस्त मुंबई का यहीं समाप्त होता है। 10 बजने को है, कुछ ही देर में प्रमुख समाचार आप सुन पाएंगे।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति ते लैम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति आज कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में नई विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही इन राज्यों में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के लिए कड़े निर्देश भी दिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जल डमरू मध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान कुछ समय के लिए स्थगित करने की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि हाल के सैन्य घटनाक्रमों और राजनयिक वार्ताओं में हुई प्रगति के कारण ये निर्णय लिया गया है। आईपीएल क्रिकेट में कल दिल्ली में खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स 11 से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

सुबह के 10:02 हो गए हैं। आप सभी का एक बार फिर से मैं आरजे रेहान और आरजे रॉबिन आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकल ईयर्स। रॉबिन, शुरुआत करते हैं अब अपने दूसरे सेगमेंट की जिसका नाम है नमस्ते भारत।

0: हमने लिया फिल्म अपनापन से। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुछ ऐसे महिला संगीतकारों की जिन्होंने अपने संगीत के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। रॉबिन, वैसे तो इस इंडस्ट्री को पुरुष प्रधान इंडस्ट्री कहा जाता है, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें, खासकर गायिकाओं की, तो गायिकाओं में तो एक से बढ़कर एक गायिका हैं। लता जी, आशा जी, सुमन कल्याणपुर तमाम इस लिस्ट में आएंगे। आज के दौर की श्रेया घोषाल या फिर सुनिधि चौहान या फिर जो नए नए गायक कलाकार आ रहे हैं, इनमें अरिजीत सिंह का भी नाम है अगर मेल सिंगर्स की बात करें। लेकिन जब महिला संगीतकार की बात होती है तो उसमें बहुत गिना चुना नाम आता है हमारे सामने, और आज हम अपने इस सेगमेंट में ऐसी ही कुछ महिला संगीतकारों का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपने संगीत के जरिए लोगों के दिलों के तार को एक तरीके से छेड़ दिया।
1: जी,

तो दोस्तों, नमस्ते भारत सेगमेंट की शुरुआत हो चुकी है और ये पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने सुना। बहुत ही खूबसूरत गीत है और इस गीत को

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घर गणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू.
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध. शर्तें लागू.
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन.
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ.

0: तो 10:17 हो गए हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत। ये है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, मिस कुल योर्स। मैं हूं आपके साथ आरजे रेहान, और मेरे साथ हैं आरजे रॉबिन। रॉबिन, आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं महिला संगीतकार उषा खन्ना की। उषा खन्ना एक ऐसी संगीतकार के तौर पर जानी जाती हैं जिन्होंने इस पुरुष प्रधान हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई। बावजूद इसके जो है उनका जो योगदान है वो ज़्यादा अहम नहीं माना जाता, लेकिन अगर हम संगीत की दृष्टि से देखें तो काफ़ी अहम रहा है एक महिला होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाना। तो उषा जी ने वो साबित किया, और 1959 में उनकी जो फिल्म आई दिल देके देखो, और इस फिल्म के ज़रिए जो है उन्होंने अपने आप को उस समय के कई मशहूर संगीतकारों की फहरिस्त में अपना नाम जो है शामिल कर लिया। क्या कहेंगे उषा जी के संगीत के बारे में, किस तरह का संगीत था, आपको कैसा लगता है?
1: जी हाँ, बहुत सारे संगीतकार हैं हमारे बॉलीवुड में, लेकिन महिला संगीतकार में जिनका नाम सबसे पहले आता है वो है उषा खन्ना जी। उन्होंने कई सुपरहिट गाने दिए हैं, और अपने टैलेंट से यह साबित किया है कि संगीत का कोई जेंडर नहीं होता। उनका म्यूजिक आज भी टाइमलेस है, जो हर जनरेशन को कनेक्ट करता है, और मैंने भी उनके कई गाने सुने हैं और काफी मुझे अच्छे लगते हैं।
0: उनके ब्रेक देने का किस्सा भी बड़ा मशहूर है।
1: अच्छा।
0: और जब उनकी पहली फिल्म रिलीज हुई तो उस समय अपने पूरे चरम पर थे संगीतकार ओपी नैयर साहब।
1: जी।
0: जब उन्होंने उषा जी का संगीत सुना तो वो बहुत ही सरप्राइज हुए, और कहीं ना कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि उषा खन्ना के संगीत में ओपी नैयर की एक छाप जो है झलकती रही है। वो इसीलिए सरप्राइज हुए थे कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैंने ही वो म्यूजिक बनाया है।
1: जी।
0: तो आइए ये गीत सुनते हैं फिल्म सौतन का, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, जिसे अपने संगीत के जादू से संवारा है, सजाया है उषा खन्ना ने।

0: फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: कागद पेन नहीं या वेड़ी मोबाइल सा नवा उपक्रम आए विवरण आनी मा

0: जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी व घरगणना म्हणजेच आपल्या घराची गणना होईल. या आपल्या भागीदारीने याला यशस्वी करूया आणि विकसित भारत 2047 च्या दिशेने अजून एक पाऊल उचलूया.
1: तो इस समय रॉबिन हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10:31 हो गए हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर म्यूजिकली आवर्स. हम बात कर रहे हैं इस सेगमेंट में मशहूर संगीतकार उषा खन्ना जी. रॉबिन, अगर हम उषा खन्ना के शुरुआती संगीत शिक्षा की बात करें तो उन्होंने सरस्वती देवी और जद्दन बाई जैसे महान संगीतकार, या यूं कहें कि संगीत के धुरंधरों से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की और इस पुरुष प्रधान सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई और उन्होंने 6 दशकों तक जो है अपने संगीत से लोगों को एंटरटेन किया और एक अलग पहचान बनाई, लोगों के दिलों पर राज किया. और ये किसी भी एक महिला संगीतकार के लिए बड़ी उपलब्धि रही है अब तक. क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे आप?
2: देखिए, जब भी 60 का दशक और 70 के दशक के मधुर गीतों की बात होगी तब तक उषा खन्ना जी का नाम बिल्कुल सामने आएगा. उनकी धुनों में एक सादगी है, एक अपनापन जो सीधे दिल को छूता है. तो आइए इसी एहसास को महसूस करते हैं और इनकी एक यादगार गीत के साथ.

रॉबिन उषा खन्ना की बात करें तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी के साथ कई सुपरहिट गाने दिए थे, और आराधना जब राजेश खन्ना की रिलीज़ हुई और किशोरदा की आवाज़ में वो गाना लोगों ने खूब पसंद किया, और उसके बाद कहते ये हैं कि रफ़ी साहब का करियर ढलान पे आ

0: गया था। तो ऐसे जो है मुश्किल दौर में उषा खन्ना ने मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया था, और वो गाना जो हवस के लिए रफ़ी साहब ने गाया, जिसके जो बोल थे, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, और इस गाने में इतना जो है रफ़ी साहब को पसंद किया गया। और जब पुरस्कार समारोह हुआ 1974 में, ये फिल्म जब रिलीज़ हुई बॉम्बे के शंख मुखानंद हाल में, तो पूरा हाल जो है खचाखच भरा हुआ था, और उस वक्त रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार जो है दिए जाने की घोषणा हुई। और जब विजेता की घोषणा हुई तो रफ़ी साहब का जो चेहरा था, उसके जो हाव भाव थे, वो काफ़ी अलग नज़र आए। ये जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था उनका, आत्मविश्वास जो उनका खोया हुआ था, वो फिर से लौट आया इस गाने के बाद, और उसके बाद जो है दोनों ने कई फिल्में एक साथ की।
1: जी, ये गाना भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा गाना है ये, तो क्यों ना इसको प्ले किया जाए हमारे लिसनर्स के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 10:50 हो गए हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। और इस सेगमेंट यानी कि नमस्ते भारत में अभी आपने उषा खन्ना के कुछ मशहूर गीत सुने जिन्होंने संगीत के जादू से सजाया था। और बात करें आज के दौर की महिला संगीतकारों की रॉबिन, तो इसमें स्नेहा खानवलकर और जसलीन रॉयल का नाम भी शामिल है जिन्होंने कई अपने संगीत के ज़रिए जो है और गीत के ज़रिए, यहाँ तक कि अगर जसलीन की बात करें तो वो गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं और गाने भी लिखती हैं। और इसके अलावा स्नेहा की बात करें तो वो भी जो है संगीत देती हैं। तो अगर हम बात करें महिला संगीतकारों की, तो धीरे धीरे नई जनरेशन जो है सामने आ रही है जो संगीत के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने की कोशिश की रही है। जल्दी से क्या कहेंगे आज के दौर के महिला संगीतकार
1: जी? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो जसलीन रॉयल है। उन्होंने एक बॉलीवुड में एक अलग पहचान बना ही अपनी, और उन्होंने साबित किया है कि अगर पैशन सच्चा हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और ऐसे ही स्नेहा खानवलकर भी हैं, जो मतलब जो उनका जो कंपोजिशन है वो उन्होंने इंडियन फोक और स्ट्रीट साउंड्स और रियल लाइफ टेक्चर्स को मिलाकर जो साउंड क्रिएट किया है ना, वो बिल्कुल यूनिक है। उनका म्यूज़िक थोड़ा बेबाक, थोड़ा अनसुना, लेकिन दिल के बहुत करीब है।
0: ठीक है रॉबिन, तो चलिए चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं क्योंकि समय इस बात की अनुमति नहीं दे रहा कि हम और आपके साथ बने रहें। आप यूं ही सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, म्यूजिकल योर्स, और इंजॉय करते रहिए। फिलहाल
1: मैं भी सबको बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप, आई होप आप सबने हमें सुन के आपको अच्छा लगा होगा, हमने जो गाने प्ले किए हैं आपको पसंद आए होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम पसंद आया होगा। और इसी के साथ मैं RJ रेहान और
1: RJ रॉबिन
0: आपसे चाहते हैं अनुमति। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। 11:34:35 हो चुके हैं और आइए इस घंटे के मुख्य समाचारों पर एक नजर डालें। कपास की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कपास क्रांति मिशन को मंजूरी दी गई है, जिसका लक्ष्य प्रति हेक्टर उत्पादन दोगुना करना है। कल मंत्रिमंडल की बैठक में बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। गन्ने का एफआरपी 10 रुपए बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। रबी सीजन में चने की खरीद की मंजूरी दी गई है और अवधि 29 मई तक बढ़ाई गई है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के नेता जोसेफ विजय आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात करेंगे और राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए पार्टी को 10 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। मुख्य समाचारों में आगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। वे कल कोलकाता के पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार जनादेश नहीं है, बल्कि भाजपा ने करीब 100 सीटें अनियमितताओं के जरिए जीती हैं और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। मुख्य समाचारों के अंत में, मौसम विभाग ने आज बिहार और पश्चिम बंगाल में और गंगा के मैदानी इलाकों में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में रविवार तक बारिश का अनुमान है, जबकि कोंकण और गोवा में रविवार तक गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। इसी के साथ इस घंटे के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। ब्रेक फ्री के लिए बने रहिए 107.1 एफएम रेनबो पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, आजकल हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत सुन रहे हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में तो हमेशा से ही बातें होती रही है, और ये चीजें जरूरी भी हैं, पर सिर्फ सोचते बैठने से चीजें हो नहीं जाती, उन्हें करना भी तो पड़ता है। तो चलिए, आज बातें होंगी सिर्फ सोचते रह जाने के दायरे से बाहर निकलने की, ख्याली पुलाव की हांडी से अपने दिल और दिमाग को ब्रेक फ्री करने की, शेक चिल्ली ना बनकर वाकई कुछ कर दिखाने की, सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने की। मैं हूँ वैशाली और आज मेरे साथ है स्वेग चाह, जो स्टूडियो में मौजूद है और अगले घंटे वो भी जो है मिलकर बातें करेंगे आप सभी से। तो फिलहाल बहरहाल दिल थाम कर बैठिए और सुनिए इस गाने को जो वाकई आपके दिल के तार छेड़ने वाला है, और थोड़ा सा फ्री और अच्छा सा महसूस कीजिए, क्योंकि भाई टाइम ही बोल रहा है कि ब्रेक फ्री करो यार। बने रहो, सुनते रहो 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना 2027 आपली आहे, जनगणना आपली आहे।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

मर्दुमशुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।

आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो और ब्रेक फ्री चल रहा है। आप सभी से बातें कर रही हूँ मैनिफेस्टेशन, पॉजिटिविटी, इन सारी चीजों के बारे में, पर एक अलग तरीके से। देखिए, हर एक का अपना नजरिया होता है और हम अक्सर सोचते हैं चीजों के बारे में। तो वो कौन सी चीजें हैं, जब मैं सोच रही थी कि भाई हम सोचते बहुत है, कर पाते हैं क्या, तब मैंने समझा, मैंने जाना कि भाई मान लिया कि सोच पॉजिटिव रखना जरूरी है, पहले ही से हमें जो चाहिए उसे मैनिफेस्ट करना भी जरूरी है, पर सिर्फ ख्याली पुलाव मन में पकाने से हमारे काम खुद ब खुद तो होंगे ही नहीं। जब कर्ता कर्म को करेगा तभी तो क्रिया होगी, है ना। तो मेरा सवाल ये है कि कई सारे लोग यानी कर्ता बने जो है, यानी कि कर्ता जो सारे हैं, वो कर्ता बने बिना, कार्य अच्छे से किए बिना कैसे सोच लेते हैं कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग और मैनिफेस्टेशन से किसी जादू की तरह काम हो जाएगा। आपके मन में भी ये सवाल अक्सर उठा होगा। अब चाहे जितने ही सपने देख लो, मैनिफेस्ट कर लो, चीजों को कंपटीशन और इतनी आबादी के रहते जो है एफर्ट्स तो आपको लेने ही होंगे। अच्छी प्लानिंग से लेकर तगड़े एग्जीक्यूशन तक चीजों को करने के बाद ही फिर आप सफलता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये मत कहिए कि कॉन्फिडेंस की कमी है या भाषा नहीं आती फलाना फलाना। चलो तो आपकी उस प्रॉब्लम पर भी बात कर लेते हैं कुछ और गानों के बाद। ब्रेक फ्री जो करना है, अपने इस डर से, ख्याली पुलाव से जो बाहर निकलना है, शेक चिल्ली नहीं बनना है, एक्चुअली चीजों को कर दिखाना है, तो इसका कुछ प्रोसेस तो होगा ना। वही आप सभी के साथ साझा करेंगे और आपकी भी बातें जानेंगे। बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: प्रवेश विनामूल्य।
1: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण। सूर गौरव संध्या।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। ब्रेक फ्री चल रहा है और बातें कई सारी हो रही हैं आप सभी के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीजें तो जरूरी है, पर देखिए मैं बात कर रही हूँ उसकी जिसे हम कहते हैं ना खाली पुलाव से ब्रेक फ्री करना। कुछ लोग होते हैं बस सोचते रहते, इतना सोचते हैं, दिमाग भी भारी होता है और कोई काम नहीं हो पाता। तो भाई प्रॉब्लम है क्या, तो थोड़ा हम जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है अच्छे प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, पर देखिए हिम्मत वाकई बड़ी चीज है। बिना हिम्मत के इंसान कुछ कर भी नहीं सकता और कभी कभी कॉन्फिडेंस इसी हिम्मत से आती है। अब आपको सुनाती हूँ एक छोटी सी कहानी सलोनी की। सलोनी के पास सब कुछ था, प्यार करने वाला परिवार, सारे ऐशो आराम, पर उसे इन सबसे हटकर अपने लिए कुछ करना था। इश्यू पता है आपको क्या था? क्योंकि सवाल तो मन में आता है ना, जब सब कुछ ठीक था तो इश्यू क्या है भाई। उसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी लाइफ में, इसलिए तजुर्बों की कमी थी। उसका सपना था अपना रेस्टोरेंट खोलना, पर कॉन्फिडेंस कतई नहीं था क्योंकि जीवन में हर जगह उसके परिवार ने उसके लिए मखमली गद्दा बिछा दिया था। अब ऐसे में करती तो क्या करती सलोनी, किस तरह से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाती बिना तजुर्बे के? आपको क्या लगता है सलोनी ने क्या करना चाहिए, बताइए मुझे। और बने रहिए 107.1 एफएम रेनबो पर, आप सभी के लिए यहाँ पर गानों की महफिल सजी हुई है। और इंसान को बस यही याद रखना है कि चलते जाना है, कुछ ना कुछ करना है, ना रुकना है ना थमना है। जिंदगी वाकई खूबसूरत है, बस हमें सोचते नहीं रहना, जकड़े नहीं रखना खुद को, हमें बाहर निकलना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, बहुत कुछ हो सकता है ना।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.

ब्रेक फ्री चल रहा है 107.1 FM रेनबो पर। बातें हो रही हैं सलोनी की, जिसने कोशिश करने की तो सोची कि भाई क्या किया जाए जीवन में। आप सभी से मैंने पूछा था कि सलोनी को क्या करना चाहिए। उसे एक रेस्टोरेंट खोलना था, होटल खोलनी थी, तो भाई उसे क्या करना चाहिए। सारे ऐशो आराम थे उसके पास, तजुर्बा नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं था करना क्या है। तो मुझे दीपा पालकर जी यहाँ पर लिख भेजती हैं कि सलोनी को खुद का मन जो कहता है उसकी सुनकर ठोस निर्णय लेना चाहिए। वाह। और यहाँ पर पंकज मोहर जी ने भी हमें मैसेज किया है, ये लिखते हैं कि सलोनी के पास सब कुछ है, अच्छा परिवार, खुद को अच्छा करना है उसे भी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि आज तक उसे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और परिवार के सभी ने हमेशा साथ दिया। लेकिन सलोनी को कुछ करना, कुछ नया करने की जरूरत तो है ही, और नया सीखना होगा और खुद पर भरोसा करना होगा, काम करना होगा आत्मविश्वास से, और कुछ करना है, कोशिश बार बार करने से ही काम बनेंगे और फिर आत्मविश्वास भी आएगा और खुद पर निर्भर होगी। वाह क्या बात है। बाकी हमारे कई सारे श्रोताओं के भी मुझे मैसेजेस आए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल से हमसे जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर संजय दर्शन जी हमें लिखते हैं कि मेरा एक ही मंत्र है, नेवर गिव अप। जिंदगी एक जंग है, सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा, आज कुछ है तो कल कुछ और होगा, और उसे फेस करना है, जितना या जो भी हल हो पाए वो हल तो करना पड़ेगा। मुझे यहाँ मैसेज आया है अशोक पाटिल जी का वर्ली से, और फिरोज सिंगनपोरिया जी भी लिखते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, जब जब आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं। शुभलक्ष्मी मस्तकर जी लिखती है कि अपने जिंदगी में हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचना चाहिए और कॉन्फिडेंस से वही बात कंप्लीट करनी चाहिए और जिंदगी हंसी खुशी बितानी चाहिए। वाह। और मुझे वंदना दामले जी का हेलो आया है, शुभदा जी को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, हेलो। और विजेंद्र घाटोल जी भी हमें मैसेज करते हैं, धन्यवाद आपका। प्रणव शिंदे जी भी मैसेज करते हैं, सुमधुर गाने एंजॉय कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और प्रमोद चिंचोलकर जी भी हमें मैसेज करते हैं अकोला से, धन्यवाद। और आप सभी यूं ही बने रहें, जुड़े रहें। राम प्रजापति जी भी जुड़े हैं अभी अभी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का। और अगर अब बात करूं आपसे सलोनी की, हाँ तो दोस्तों सलोनी ने वो किया जो बहुत लोग कर पाते हैं। अब क्या है वो, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं भी कर पाते हैं। और देखिए सलोनी का प्रॉब्लम ये था कि उसने खुद ज्यादा कुछ

किया नहीं था लाइफ में, कॉन्फिडेंस कम था, पर बाकियों को वो हमेशा इंडिपेंडेंट, मजबूत और कॉन्फिडेंट लगती थी। आप समझे उसका प्रॉब्लम कि औरों को लगा कि यार ये तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, और आप सभी ने बताया उसने क्या करना चाहिए, और कुछ ऐसा ही सलोनी ने किया। देखिए वो समझ चुकी थी कि वो ऊपर से तो कॉन्फिडेंट लग रही है पर अंदर से नहीं है, कमी है। तो सारी चीज़ों को मुमकिन बनाने के लिए, अपना रेस्टोरेंट खोलने के लिए उसने सोच लिया कि मैं कहीं जॉब ले लूँगी, और रेस्टोरेंट में उसने नौकरी कर ली। उसने किसी को पता तक ना चलने दिया कि उसके क्या इरादे हैं, क्या उद्देश्य है आगे चलकर, और वो कितने सेटल्ड परिवार से आती है। उसने बस मेहनत की, और जब उसे लगा कि वो तैयार है, उसने अपने दम पर अपना रेस्टोरेंट खोला और चलाना शुरू किया, और बहुत ही अच्छे से चलाया। देखिए दोस्तों, लाइफ में कुछ भी आसान नहीं होता, और उसके लिए भी नहीं था, पर वो डरी नहीं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी, और ये आया कॉन्फिडेंस तजुर्बे से, मेहनत से, जिससे उसने अपने डर से ब्रेक फ्री कर लिया। अगर हम परीक्षा की बात भी करें तो वहां भी आप यही बात लागू कर सकते हैं। हाँ, मेहनत और तैयारी से तजुर्बा, तजुर्बे से कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंटली किए गए काम का नतीजा सक्सेस, ये तो होना ही था, ये आप बाद में कह सकते हैं सभी से, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खूबसूरत गाने आप सभी के लिए। लक्ष्य से अब जब चलते हैं हम अपने रास्ते पर, तो हम क्या है वो पता चलता है, और फिर हम उड़ चलते हैं आगे जीवन में। 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, समय हो रहा है ठीक 12:07। आप सुन रहे हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा न देने के तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के बयान की आलोचना की है। सुश्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा नहीं सौंपेंगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस द्वारा जान देश को अस्वीकार करना पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने का उदाहरण है। वैश्विक तेल कीमतें। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सैन्य अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने की घोषणा के बाद आज वैश्विक तेल की कीमतों में गिरावट आई। ब्रेट क्रूड 1.21% गिरकर करीब $108 प्रति बैरल पर कारोबार हो रहा है। शेयर बाजार। परिणाम स्वरूप घरेलू शेयर बाजारों सेंसेक्स और निफ्टी में आज शुरुआती कारोबारी में तेजी दर्ज की गई। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान से भी घरेलू शेयर बाजारों में तेजी को समर्थन मिला। बीएससी सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 657 अंक चढ़कर 77,675 अंक पर, जबकि एनएसआई निफ्टी 218 अंक की बढ़त के साथ 24,251 अंक पर पहुंच गया। बातें खेल जगत की। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 15 लड़कों की प्रतियोगिता में नोकपोंग गनबा मेईतेई ओइना ने 46 किलोग्राम वर्ग से जीत हासिल की, जबकि प्रशांत ने 49 किलोग्राम वर्ग में जीत दर्ज की। मोहम्मद यासर ने 58 किलोग्राम वर्ग में दमदार प्रदर्शन करते हुए किर्गिस्तान के अकरजान नवीदजानेव के खिलाफ पहले ही राउंड में जीत दर्ज की। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल। एफएम रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर सुन सकते हैं।

0: दोस्तों आज स्टूडियो में मेरा साथ देने आई है स्वेच्छा। तुम्हारा दिल से स्वागत है स्वेच्छा।
1: थैंक यू वैशाली।
0: और हमने कई सारी बातें की, आप सभी को बता दूं कि बहुत मजा आया हमें, और एक दूसरे से जानने की कोशिश की और बताया एक दूसरे को कि हम कहाँ से हैं और कौन सी वो तमाम बातें हैं जो हमारे जहन में हमारे दिल में बसती हैं। स्वेच्छा, मैंने अक्सर महसूस किया है कि हर जगह हर इंसान को हर रिश्ते और ना जाने कितने बातों को अनजाने में ही सही हम किसी ना किसी संगीत से, गाने से या फिल्म से जोड़ते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?
1: बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम जब भी किसी इंसान को किसी फिल्म से या म्यूजिक से जोड़ते हैं तो वो यादगार बन जाता
0: है ना?
1: हाँ बिल्कुल, और वो हमेशा के लिए कहीं ना कहीं हमारे साथ रह जाता है।
0: हाँ, तो आज म्यूजिक कैफे में स्वेच्छा और मैं वैशाली इसी पर गुफ्तगू करने वाले हैं आप सभी के साथ। हमारी गपशप का हिस्सा बने रहिए, जुड़े रहिए 107.1 FM रेनबो पर। हम हैं म्यूजिकली योर्स।

0: सेन्सस म्हणजे आपल्या आवाजाची गणना होय. तुमच्या सहभागाने हे यशस्वी करूया. प्रत्येक व्यक्ती जोडली गेले पाहिजे, प्रत्येक घर जोडले गेले पाहिजे आणि देशाने पुढे गेले पाहिजे. जनगणना 2027 आपली आहे. जनगणना आपली आहे.
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध.
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए. इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से

0: मर्दुमशुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
2: आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, म्यूजिक कैफे चल रहा है और आपके साथ है वैशाली और
3: स्वेच्छा।
2: बस मैं सोच ही रही थी कि स्वेच्छा तुम्हें अभी अपना नाम कहने की बार बार इस तरह आदत नहीं होगी।
3: हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे हो ही जाएगी।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई बातें हम कर रहे थे संगीत की, कि किस तरह से हमारे जीवन में संगीत ही संगीत है। अब देखो स्वेच्छा, जब भी मैं अपने परिवार को याद करती हूँ, खास करके उस समय को जो बचपन का समय था, जहां पर मम्मी पापा भाई बहन वाला परिवार था, तो आप ही मुझे थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ये गाना याद आता है। और उस फिल्म के सीन्स, बातचीत उसमें जो होती है किरदारों के बीच, और प्रॉब्लम्स अपने से लगते हैं। जब भी मैं अपने पुराने एरिया कुलाबा भी जाती हूँ ना स्वेच्छा, और जब भी सोचती हूँ अपने बचपन के इस एरिया के बारे में, तो मन में जो गाना आता है पता है कौन सा है?
3: कौन सा?
2: गेस करो, चलो बताओ। कौन सा हो
3: जैसे
2: सकता
3: कि
2: है?
3: आपने बोला भी थोड़ा है थोड़े की जरूरत है।
2: और वो गाना जो है, गुलमोहर गर तुम्हारा नाम होता, ये गाना है जो मेरे मन में आता है। हालांकि ये रोमांटिक है गाना, लेकिन वो इसलिए आता है ना मन में क्योंकि केवल इस गुलमोहर शब्द की वजह से, और अगर कहूँ केवल नहीं कह सकती बल्कि इस वजह से भी कि उसमें गुलमोहर के पेड़ और सुंदर फूल दिखाए गए हैं उस गाने में, और कुलाबा की सड़कों पर गुलमोहर के पेड़ एक लाइन से लगे हुए हैं सड़क किनारे। तो बचपन में जो है ना मेरा जो ये सारा था तजुर्बा, आना जाना, स्कूल जाना, वापस आना, और बाकी अनगिनत चीजें जो थी ना वो इन्हीं पेड़ों के आसपास थी। पता है कैसा होता है ना बचपन, ये पेड़ पौधों के, झीलों के, और पता नहीं कैसे कैसे जगहों के आसपास बीतता है, गार्डन वगैरह है ना। तो बचपन मेरा खिल उठता है चाहे जहां भी मुझे ये पेड़ दिखे। तो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या? करो तो जरा कुछ अपनी बातें भी तुम।
3: हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें जो है हम बचपन में जब निकलते हैं तो पेड़ पौधे झीलें ये सब देखते हैं, लेकिन अब जब हम सोचते हैं तो वो यादें और अच्छे से महसूस कर पाते हैं और अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं, तो वो यादें और खूबसूरत लगने लगती हैं और हमेशा मतलब दिल एक खुश हो जाता है उस समय को, उन यादों को याद करके। तो बस
2: तुम्हारा दिल कहाँ जाता है जब भी बचपन की बात निकलती है? हाँ। तो तुम्हें ज्यादा स्कूल या मम्मी पापा वाला घर याद आता है या प्लेग्राउंड याद आता है, क्या याद आता है ज्यादा?
3: घर तो मुझे बिल्कुल याद आता है। मम्मी पापा भाई बहन सबके साथ एक बातचीत, मस्ती मजाक और बहुत अच्छा समय बिताना, और उसके साथ ही साथ स्कूल का समय बहुत यादगार रहा है, बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छा समय बिताया है उनके साथ, और पता ही नहीं चलता था वक्त का, इतनी हंसी खुशी, साथ में पढ़ाई भी करते थे कि समय यूं ही बीत जाता था, और वही बातें हम आज तक दोहराते हैं और उतना ही हंसते हैं जितना कि पहले खुश हुआ करते थे।
2: कितना मजा आता है ना, एक तो पुराने दोस्त और फिर वही वही पुरानी
3: बातें, और उससे कभी नहीं थकते ना कभी बोर होते।
2: क्या बात है, नहीं इसी को तो दोस्ती कहते हैं, इसी को प्यार मोहब्बत कहते हैं दोस्तों की। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और यही गाने सुनवाते हैं हमारे लिसनर्स को स्वेच्छा।
3: बिल्कुल,
2: आप सभी बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: हर फिल्म की होती है एक कहानी, और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी। मूवी माइलस्टोन, हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां, पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मूवी माइलस्टोन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
2: आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे 107.1 एफएम रेनबो पर,
3: मेरे आज स्वेच्छा के साथ और आरजे वैशाली के साथ।
2: क्या बात है स्वेच्छा, अरे वाह, मजा आ रहा है। और यहाँ पर जो है हम लोग कई सारी बातें कर रहे हैं, खूब सारी मस्ती हो रही है, लेकिन बातों वाली मस्ती है ना।
3: बिल्कुल।
2: और बातें उन चीजों की, उन जगहों की जो याद दिलाती है ना हमें कुछ ऐसे गाने, क्योंकि हम भाई फिल्मी लोग हैं, क्रिकेट प्रेमी लोग हैं तो हमारा जो जीवन है फिल्मों के और क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसलिए गानों से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, है ना स्वेच्छा?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और तुमने तो बताया नहीं बहुत ज्यादा भाई अपने बारे में, हमारे श्रोताओं को भी बताओ ना कि तुम जहाँ से आती हो, अपनी जगह अपने शहर के बारे में बताओ और उसकी आसपास की खासियत क्या है भाई, और कौन सा गाना है जो तुम्हें याद आता है, हम वो भी प्ले करना चाहेंगे थोड़ी देर में।
3: बिल्कुल। वैशाली, मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से हूँ। वहाँ की अपनी एक अलग वाइब है, जैसे मुंबई की अलग है।
2: क्या बात है।
3: तो वहाँ पे म्यूजिक वैसे भी हवाओं में है क्योंकि वो सिटी ऑफ म्यूजिक है।
2: बिल्कुल।
3: तो वैसे भी म्यूजिक से हम लोग स्पेशली कनेक्टेड हैं, तो हर फिल्मी भी हैं और म्यूजिक से कनेक्टेड भी हैं, तो सारे इमोशंस म्यूजिक के थ्रू ही दिखते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, चाहे माँ बाप का, चाहे परिवार का साथ हो, कोई भी इमोशन हो, हंसी खुशी, सब म्यूजिक के थ्रू ही देखते हैं। तो मेरे बारे में ये है कि मैं ग्वालियर से हूँ और म्यूजिक प्रेमी भी हूँ, और मुझे ये लगता है कि म्यूजिक ना हमारे इमोशंस को दिखाता है, हम जैसा भी फील करते हैं और वो म्यूजिक बताता है कि अब एक्चुअली हम एग्जैक्ट कभी कभी नहीं बता पाते हम क्या फील कर रहे हैं, पर वो सॉन्ग या मूवी या कुछ भी, वो इस तरीके की चीज वो हमारा एग्जैक्ट इमोशन सामने तक पहुंचा देता है
2: ना। और शब्द कभी कभी नहीं मिलते, कभी हम अटक जाते, कभी समझ में नहीं आता
3: क्या बोलना है
2: क्या बोलना है, और कभी कभी वो होता है ना कि यार लाइन तो पार नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बैक ऑफ द माइंड चलता है। तो पता है स्वेच्छा, जब भी मैं अपनी पुरानी डायरी लेकर बैठती हूँ ना, मुझे पहले प्यार पर लिखी अपनी बातें पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मन करता तो है ही है, लेकिन यकीन मानो कि जब वो पन्ने खुलते हैं ना, तब जो दिल में धुन बजती है ना, क्या बताऊं तुम्हें, पहला नशा पहला खुमार वाला, पता है स्टार्टिंग में जो प्रिलूड है, बस गाने की शुरुआत में जो प्रीलूड है उतना ही प्ले होता है जब मैं अपनी लिखी हुई बातें पढ़ती हूँ। और एक्चुअली एक्चुअली यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ना ठंडा सा लगने लगता है और कुछ हैप्पीनेस हार्मोन सर में घूमने लगते, पता नहीं क्या समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा क्या हाल होता है बताओ मुझे, मैं नहीं यकीन कर सकती कि तुम कुछ लिखती नहीं होंगी, तुम अब यहाँ पर रेडियो जॉकी हो तो जरूर तुम पहले ही से लिखती होंगी, तो बताओ कुछ।
3: हाँ, ये इमोशन ही इतना स्पेशल है ना, पहला प्यार कि सुनते ही लोग खुश होने लगते हैं और अंदर गुदगुदी होने लगती है कि मतलब इसको सुन के ही स्माइल आ जाती है, और जब मैं याद करूं कि इस इमोशन के बारे में कि पहला प्यार, तो बिल्कुल आपने बोला एग्जैक्ट, ये गाना सबसे पहले दिमाग में आता है कि पहला नशा, इसको सुन के लग रहा है कि बस हमारी लव स्टोरी चल रही है ये गाने के साथ साथ। तो ये गाना सच में बहुत स्पेशल है, और भी कई गाने हैं बट

0: गाना सबसे ज्यादा स्पेशल
1: है, और फर्स्ट लव के लिए,
0: फर्स्ट लव के लिए स्पेशली
1: बहुत स्पेशल है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चाशनी जैसी कुछ ऐसी चीज है जिसमें मैं घुलते जा रही हूँ, या मेरा दिल घुलते जा रहा है,
0: सब याद आ जाएगा आपको इस गाने से सुन के, सब कुछ आप पीछे पहुंच जाओगे। बिल्कुल, भले आप किसी भी एज में अभी हो, बट आपको पक्का अपना पहला प्यार याद आ जाएगा।
1: क्या बात है, सही कहा तुमने। चलो, इतना हमने बोल दिया गाने के बारे में, तो गाना भी प्ले करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: बने रहिए, सुनते रहिए 107.1 FM Rainbow, musically yours.

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 मेगाहर्ट्ज पर FM रेनबो। एक निवेदन है, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए http://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है A2524467042 और पासवर्ड है AAU779#157। इस प्रकार है, अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। ये निवेदन FM रेनबो मुंबई आकाशवाणी की तरफ से है।

0: 107.1 FM रेनबो पर म्यूजिक कैफे चल रहा है और स्वेच्छा और मैं वैशाली आप सभी के साथ बने हुए हैं और आप हमारे साथ बने हुए हैं ये कहना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: हाँ, तो कई सारी बातें प्यार वाली और अब प्यार पे अब आ गए ना तो ये ऐसा है ना स्वेच्छा जैसे कि यू नो आसमान से गिरे
1: खजूर में अटके
0: बिल्कुल अटक गए ना तो वहीं पर थोड़ी देर अटके रहते हैं और खूबसूरत गाने हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं
1: बिल्कुल क्यों नहीं
0: तो बढ़ते हैं हम उस गाने की तरफ जो बिल्कुल आपके दिल में बसता है आपको याद हो चाहे ना याद हो हम याद दिला रहे 107.1 FM रेनबो म्यूजिकली योर्स

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से, आप सुन रहे हैं म्यूजिक कैफे आरजे वैशाली और आरजे स्वेक्षा के साथ।
1: हाँ, और बहुत सारी बातें कर रहे हैं हम यहाँ पर, और प्यार के खजूर पे अटके थे हम। वो गाने सुनवाना रह गया स्वेच्छा, तुम्हें क्या लगता है प्यार के बारे में, तुम्हारी क्या सोच है, जरा कुछ बताओ तो हम भी जाने तुम्हारे दिल की बातें।
0: मैं यही सोचती हूँ कि जैसे कि आप बोल रही थी कि पहले तो एक मतलब फीलिंग्स है कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक खुशी खुशी वाले हॉर्मोन्स फीलिंग, स्माइली फेस हमेशा, बट बाद में वही खजूर पे अटके वो वाली सिचुएशन भी ना? आती है। तो हमेशा सब कुछ ऐसा हैप्पी हैप्पी नहीं है। हाँ। तो सब कुछ सारे इमोशंस इंक्लूड हैं, तो प्यार हाँ एक कंप्लीट पैकेज भी कह सकते हैं, सारे
1: इमोशंस का।
0: हाँ, तो मुझे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत इमोशंस आप हर तरीके के खर्च करते हो, तो मुझे लगता है कि ये एक कंप्लीट पैकेज है। और ऑफ कोर्स सबको एक ना एक बार इस इमोशन में डूबना जरूर चाहिए,
1: है ना, और इसी से हम बड़े होते हैं ना, ये हाँ, भी तो बात है स्वेच्छा, हम ग्रो अप करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्यार तो प्यार है ना, मतलब जरूरी नहीं ना कि सिर्फ पार्टनर वाला ही प्यार हो।
1: हाँ।
0: प्यार तो हमारे अंदर ही है, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, हर किसी रिलेशन के लिए तो प्यार जरूरी ही है ना।
1: और प्यार जो पाठ पढ़ाता है ना हमें, वो और कोई नहीं पढ़ाता है ना। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, और कितना मुश्किल होता है मोहब्बत, प्यार, इश्क, और वो है ना एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, यही बात होती है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और गानों के जरिए इस फीलिंग को महसूस करते हैं। आप सभी बने रहें, सुनते रहें 107.1 FM रेनबो, क्योंकि ठीक 1 बजे आप सुन सकेंगे दोपहर के समाचार छत्रपति संभाजी नगर केंद्र से। तो उससे पहले गानों का लुत्फ उठा लीजिए यहाँ पर, और फिर उस पार हम मिलेंगे हिट एंड हॉट में।

अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इच्छा कि हमारे श्रोताओं ने क्या क्या कहा है, जरा खोलो तो सही हमारा व्हाट्सएप मैसेज का पिटारा।
1: हाँ, तो सबसे पहले बात हो रही है दीपा पालकर जी की। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं सलोनी जी की। उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं पॉजिटिविटी को लेके, सलोनी की स्टोरी को लेके, साथ ही साथ उन्होंने कुछ गानों की फरमाइशें भी की हैं। तो हम उनके फरमाइशी गाने से ही शुरुआत करते हैं।
0: क्या बात है। और देखिए अगले श्रोता हमारे कौन है जिनका मैसेज दिख रहा है हमें,
1: प्रदीप अनंत कृष्णम। उन्होंने मैसेज किया है, उनका मैसेज है और उन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश की है, उसको अच्छा, भी हम पूरा करेंगे। और साथ ही साथ उन्हें सबको शो बहुत पसंद आ रहा है, उसके लिए थैंक यू। और चलिए सुनते हैं, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस गाने के साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का 107.1 एफएम रेनबो। आप सभी से एक निवेदन है, भारत के अत्यंत प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कारों के लिए भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। प्रस्ताव राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए https://awards.gov.in ये वेबसाइट देखें। प्रस्ताव भेजने के लिए लॉगिन आईडी है 8252446 7042 और पासवर्ड है AU779#157। इस प्रकार से है। अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है। ये आप सभी से विशेष निवेदन है 107.1 FM रेनबो पर।

0: हाँ, तो प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट, और आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सबके काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, और बिल्कुल कोशिश जारी है आप सबके गाने सुनाने की। जब म्यूज़िक के माहौल में डूब ही चुके हैं तो फिर क्या, बिल्कुल सुनते रहेंगे बहुत सारे गाने और बातें भी चलती रहेंगी बीच में। तो अभी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है काफ़ी सारे लोगों की, तो अभी हम प्ले करने वाले हैं राम प्रजापति जी का गाना।
1: सोना कितना सोना है क्या ये वाला है?
0: हाँ, ये गाना,
1: हाँ
0: पहले हम ये गाना प्ले करते हैं, सोना कितना
1: जी,
0: सोना है,
1: हाँ
0: उसके बाद हम और भी गाने प्ले करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए गाना।

हाँ, तो ये गाना सुन के कैसा लगा आपको? मज़ा तो आ रहा होगा। खैर, हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है शो में, और साथ ही साथ जो लोग जुड़े हैं उनके बारे में बताना चाहूँगी। तो ये जो गाना था वो ये जो गाना था वो प्रदीप जी ने नहीं, राम प्रजापति जी ने कुछ कुछ होता है का गाना रिक्वेस्ट किया है, तो वो हम अभी बजाएंगे। और ये गाना विजेंद्र घटोल जी ने रिक्वेस्ट किया था, जो कि हमने अभी बजाया है। तो आगे जुड़े रहिए हमारे साथ और गाने सुनने के लिए। और फिरोज सिगनपुरिया जी भी जुड़े हैं हमारे साथ, तो देखिए कोशिश कर रहे हैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की। तो बने रहिए हमारे साथ म्यूज़िक कैफ़े में। तो तब तक सुनते हैं ये गाना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: हाँ जी, तो कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम? बिल्कुल, आप लोग बता रहे हैं और मैं देख भी रही हूँ आप सभी के मैसेजेस। तो अभी भी काफ़ी सारे लोगों की फरमाइशें आई हैं और हम कुछ गाने चलाने वाले हैं और मैं कुछ नाम लेती हूँ। तो शुभदा जी ने खट्टा मीठा का गाना कहा है और राकेश जी ने धनवान का गाना बताया है। प्रकाश शिंदे जी ने दीवानगी गाना बताया है। तो ये सभी गाने हम सुनते हैं और बने रहिए आप हमारे साथ। और एक गाना और है, ये आंखें देखकर, ये गाना भी हमें रिक्वेस्ट किया गया है और हम बजाते हैं। तो आप सुनते रहिए हमारे साथ FM रेनबो 107.1।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी, तो म्यूजिक कैफे का सफर चलता जा रहा है और आप लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप सब साथ में जुड़े हुए हैं और बस आगे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ नाम लेना चाहूँगी, जैसे अजय साखरे इंदौर से जुड़े हुए हैं, प्रवीण जी, मेहर अरोरा जी, प्रकाश शिंदे जी, हिमानी वर्मा, सुबलक्ष्मी मस्तकर, दीपा पालकर, सुशील यादव, रेणु यादव, बाबा दादर से मुकेश कश्यप, श्रद्धा मंत्री, वैदेही, अंजू अंधेरी से दिग्दर्शन और कविता, अभिजीत जी, राकेश माथुर जी, योगेश भवार जी, विजेंद्र जी, संदीप कुमार, पंकज मोहर, राजेंद्र परमार जी, सुनील और जो रत्नागिरी से, शुभदा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप हमारे साथ जुड़े हैं।
2: स्वेच्छा, कितना अच्छा लगा आज बातें हुई और तुमने काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज हमें बताई, हमारे श्रोताओं को बताई, अब तुम्हें भी जानने लगेंगे सारे ही। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमें पंकज मोहड़ इनका कॉल आया था, इन्होंने भी हमें बताई ये बात और प्रकाश शिंदे जी ने भी यहाँ बताई है। पता है क्या, इनका जन्मदिन है आज और पंकज मोहड़ जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और प्रकाश शिंदे जी को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। और उन्होंने जिस मूवी का, जिस गाने का जिक्र किया है, दीवानगी दीवानगी, इस उन्होंने बताया कि इस मूवी को रिलीज हुए 21 साल पूरे हो गए हैं और ये गीत उन्होंने इसीलिए रिक्वेस्ट किया है। और आज के बर्थडे बॉय आरजी विद्यासागर जी और हमारे श्रोता पंकज मोहर जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो ये सॉन्ग उन्होंने दोनों को डेडिकेट किया है। सो थैंक यू सो मच और हैप्पी बर्थडे हम सबकी तरफ से। तो
2: और मैं और स्वेच्छा जो है आप सभी से इजाजत लेने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि होता है कि समय की कमी है, वक्त तो खत्म होते जाता है और स्वेच्छा हमारे इतने सारे श्रोता जुड़े, लेकिन सभी को पता है कि एक मर्यादा है समय की, तो हम सारे गाने नहीं प्ले कर पाते। तकरीबन हम जो है 8-1 गाने इस घंटे प्ले कर पाते हैं, है ना। तो ये तो हमेशा रहता है मन में, थोड़ा सा दुख लगता है कि सबके गाने नहीं प्ले कर पाए, लेकिन हमारे जो श्रोता है, जो शाम को हमारा श्रोता है, हम तुम, इसमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं, है ना। तो हम दोनों आप सभी से ले रहे हैं इजाजत, मैं आपसे मिलूंगी आने वाली 12 तारीख को इसी समय पर 11 से 2 बजे के बीच। मैं हूँ वैशाली
1: और मैं हूँ आरजे स्वेच्छा,
2: बने रहे, सुनते रहे 107.1 FM रेनबो,
1: दिल से
2: म्यूजिकली योर्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों और चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया, नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद किए गए। वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम के राष्ट्रपति चुने जाने के एक महीने के भीतर ही राष्ट्रपति तो लाम की भारत की पहली राजकीय यात्रा ये दर्शाती है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं।
1: वियतनाम के प्रेसिडेंट बनने के बाद एक महीने के भीतर ही है उनका भारत आना,

0: और एक हाई लेवल डेलीगेशन समेत कई बिजनेस लीडर्स के साथ आना यह स्पष्ट करता है कि वे भारत वियतनाम संबंधों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत बोध गया से की। यह हमारे दोनों देशों की साझा सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपरा को दर्शाता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और वियतनाम अपने संबंधों का और विस्तार करेंगे।
0: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार दोगुना हुआ है।
0: भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारी ड्रग अथॉरिटीज के बीच एमओयू से अब भारत की दवाइयों का वियतनाम में एक्सेस बढ़ेगा। हमने भारत आसियान ट्रेड एग्रीमेंट आईटीगा को वर्ष के अंत तक अपडेट करने पर भी सहमति बनाई।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि, मत्स्य पालन और पशु उत्पादों का वियतनाम को निर्यात भी सुगम होगा। उन्होंने कहा कि वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए आज दोनों पक्षों ने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की यूपीआई और वियतनाम की त्वरित भुगतान प्रणाली को भी जल्द ही जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और विजन ओशन का एक प्रमुख स्तंभ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सरकार गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को चुनाव के बाद होने वाली किसी भी हिंसा से निपटने के कड़े निर्देश दिए हैं। राज्य में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राज्य प्रशासन में तैयारियां चरम पर पहुंच गई हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा कर सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह इसके तुरंत बाद होने की संभावना है।
2: सरकार बनाने के संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने आज चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने राज्य की सभी 293 विधानसभा सीटों का चुनाव परिणामों को आधिकारिक अधिसूचना राज्यपाल को सौंपी। राज्यपाल निर्णय ले सकते हैं कि नई सरकार के औपचारिक शपथ ग्रहण तक अंतरिम प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख से स्थिति और जटिल हो गई है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वे इस्तीफा नहीं देगी। इस राजनीतिक टकराव के माहौल में बंगाल में प्रशासनिक बदलाव की तैयारियां अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। ये आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों से आधिकारिक सुरक्षा के महत्व को दोहराया है। असम में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने आज गुवाहाटी के लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को इस्तीफा सौंप दिया। राज्य में अब नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बाद में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शर्मा ने बताया कि राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वर्तमान विधानसभा को भंग कर दिया है।
3: जब तक नया मंत्रिसभा का गठन नहीं होते है, तब तक मुझे और मेरा मंत्रिसभा को केयरटेकर रूप से काम चलाने के लिए राज्यपाल महोदय ने निर्देश दिया। बीते 5 साल सरकार चलाने में हमारे राज्यपाल महोदय ने हमें जो मार्गदर्शन किया, इसके लिए भी मैं राज्यपाल महोदय को धन्यवाद और हमारा ओर से अपना ग्रेटिट्यूड भी प्रस्तुत किया।
1: श्री शर्मा ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेदरी कड़गम टीवीके के नेता सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्टी को सरकार बनाने के लिए 10 और सदस्यों की आवश्यकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज चेन्नई पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सी जोसेफ विजय आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में कांग्रेस के 5 विधायकों ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया है। यह निर्णय तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चुडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के नव निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की बैठक में लिया गया। किल्लियोर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक राजेश कुमार को राज्य विधानसभा में कांग्रेस का नेता चुना गया है। इससे डीएमके गठबंधन के विधायकों की संख्या कम हो गई है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार को औपचारिक रूप से समर्थन देगी। उधर तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस के समर्थन पर डीएमके नेता और प्रवक्ता कनिमोई एनवीएन सोमो ने कहा, अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो ये डीएमके पर एक बड़ा प्रहार है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: केरलम विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत प्राप्त यूडीएफ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मोर्चे का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस पहले मुख्यमंत्री का चयन करेगी, इसके बाद आगे की चर्चा होगी।
5: केरल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल तिरुवनंतपुरम में आयोजित की जाएगी। ये बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के पर्यवेक्षकों द्वारा की जाने वाली अनौपचारिक चर्चाओं के बाद होगी। पर्यवेक्षक आज शाम राजधानी पहुंचने वाले हैं। केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में निर्णय विधायकों के विचार जानने के बाद ही लिया जाएगा। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद यूडीएफ विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों के बाद गठबंधन के नेता राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लीपुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 19 जिलों में रेलवे परियोजनाओं को मंत्रिमंडल की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से देश भर के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक पहुंच और भी बेहतर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने के मंत्रिमंडल के निर्णय से देश की न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को यह दावा करते हुए दिखाया गया है कि पाकिस्तान ने पिछले साल 10 मई को भारत के सिस्टम को जाम कर दिया था। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निर्मित डीप फेक है और इसे पाकिस्तान द्वारा गलत सूचना फैलाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। पंजाब में कल रात जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय और अमृतसर के खासा में सेना के एक प्रतिष्ठान के बाहर 2 विस्फोट हुए। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के नापाक मंसूबों का एक हिस्सा है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने सेना और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमृतसर के खासा स्थित विस्फोट स्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार दोनों स्थानों पर आईईडी का इस्तेमाल किया गया था।
6: खालिस्तान लिबरेशन आर्मी एस सारे नॉन एग्जिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आईएसआई की कोशिश है, वो एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि पंजाब डिस्टर्ब्ड है। एक एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर द रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ ते इन्वेस्टिगेशन जड़ा हैगा दैट इज बीइंग कैरीड आउट इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड अदर एजेंसीज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और यूरोपीय संघ ने भारत यूरोपीय ऊर्जा व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद कार्य समूह के अंतर्गत ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए 169 करोड़ रुपए की संयुक्त पहल शुरू की है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा है कि यह पहल भारत यूरोपीय ऊर्जा रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा कि देश के ईवी बाजार के तेजी से विस्तार के साथ संसाधन सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के लिए एक मजबूत घरेलू पुनर्चक्रण प्रणाली का निर्माण आवश्यक है। मूडीज रेटिंग्स के अनुसार भारत पिछले 5 वर्ष में सबसे बड़ी उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। अपनी हाल की रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा है कि भारत मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, एक स्थिर और पूर्वानुमानित नीतिगत ढांचा तथा मजबूत घरेलू पूंजी बाजार के साथ भविष्य के वैश्विक झटकों को झेलने के लिए अपने अधिकांश समकक्षों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब व्यापार को लेकर तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता के बीच वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। अमेरिका में भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ओहायो के गवर्नर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इस वर्ष नवंबर में उनका मुकाबला डेमोक्रेटिक पार्टी एमी एक्टन से होगा। अगर वे चुने जाते हैं तो वे लुसियाना में बॉबी जिंदल और दक्षिण कैरोलिना में निकी हेली के बाद अमेरिका में तीसरे भारतीय गवर्नर बन सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज पेचिंग में वार्ता की। ये वार्ता ईरान पर हुर्मुज जल डमरू मध्य को अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खोलने और संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता करने के बढ़ते दबाव के बीच हुई। चीन की मीडिया के अनुसार दोनों विदेश मंत्रियों ने हुर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी हटाने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल और तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। आज हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच नई दिल्ली में वार्ता हुई। डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ खनिजों, चिकित्सीय उत्पादों से जुड़े विनियमन के क्षेत्र में कई समझौतों का आदान प्रदान हुआ। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के पास बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के साथ राजनीतिक गतिविधियां तेज। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने त्याग पत्र दिया। नई सरकार का शपथ ग्रहण 11 मई के बाद। भारत और यूरोपीय संघ ने ईवी बैटरी पुनर्चक्रण क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त पहल का शुभारंभ किया। मौसम विभाग का असम, बिहार, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो। शाम के ठीक 5:02 का समय और ये समय होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का। मैं हूँ शुभांगी
2: और मैं हूँ आरजे आदित्य।
1: कार्यक्रम रहेगा
2: हमेशा की तरह मस्त,
1: बातें करेंगे
2: जिंदगी के हल्के फुल्के पलों की
1: और
2: सुनेंगे ब्यूटीफुल फुल ऑफ लाइफ गाने भी।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सुन रहे आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। आदित्य, हम में से कई या हम सभी, क्योंकि जिंदगी के रास्ते तो अनजान होते हैं और हम सभी कोई ना कोई स्ट्रगल करते हुए हम आगे चलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, फिर उसमें कितनी सारी वैरायटीज हमें दिखती है कि कोई 58 साल की उम्र में ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतता है या 86 साल की उम्र में, किसी ने पढ़ाई पूरी की हो, किसी दादा ने, किसी दादी ने या किसी नानी ने।
2: जी हाँ, 2022 के बाद फिर एक बार पुरुष बैडमिंटन का थॉमस कप जीतने वाला संघ हो या छठवीं बार भारत को पुरुषों के क्रिकेट का अंडर 19 कप जिताने वाला भारतीय संघ हो, सभी कहते हैं लव यू जिंदगी।

0: सुन रहे आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर म्यूजिकल इयर्स। आदित्य, हम सभी को आराम वाली जिंदगी की ख्वाहिश होती है, बिल्कुल होती है ना?
1: बिल्कुल।
0: लेकिन आराम वाली जिंदगी और खुशहाल जिंदगी, इसमें क्या हम कुछ फर्क करते हैं? करना चाहिए?
1: करना चाहिए ये अपनी अपनी बात है, लेकिन फर्क ये होता है मेरे हिसाब से, खुशहाल जिंदगी वो होती है जहाँ पे हमें चैन की नींद मिलती है, जो कि हमें खेतों खलियानों में भी मिल सकती है, किसी आम के पेड़ के नीचे। और जो आराम वाली जिंदगी है उसके लिए हमें चीजों के पीछे भागना पड़ता है,
0: जो हम सभी करते रहते हैं।
1: जी हाँ, मुझे महंगी गाड़ी खरीदनी है, मुझे बड़ा सा घर खरीदना है, जो है उसमें भी खुश रह सकते हैं, उसे खुशहाल जिंदगी भी कह सकते हैं।
0: और हमेशा मतलब कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ पाने के पीछे हम दौड़ते रहते हैं।
1: एग्जैक्टली। तो इसमें ये फर्क करना जानने का कारण, हम उसी भीड़ से भरी एक तरफा सोच की ट्रेन में हम घुस से जाते हैं और मुकाम आने तक सोच ही नहीं पाते कि असल में हम चाहते क्या है। तो इसी बात पे ये अगला गाना हम पेश करते हैं।
2: मामा पापा का वो नामुमकिन सपना जो सच हुआ है, मैं उनकी दिल की धड़कन हूँ जिसे वो सुन नहीं सकते, मैं उनकी पहचान हूँ, उनकी आवाज हूँ। हमारी छोटी सी दुनिया है सिर्फ तीनों की, लेकिन मैं आसमान को छूना चाहती हूँ, गाना चाहती हूँ। आवाज और खामोशी टकराते गए, फिर भी सपने जिंदा हैं, है ना ये नामुमकिन सपना? लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें कोई नामुमकिन सपना ना हो।

मर्दुमशुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर।

0: सुन रहे हैं आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। आदित्य क्या कहोगे इसके बाद?
1: वैसे मिलने को तो ना कोई मिलता है अपने को जिंदगी में।
0: हाँ, बहुत बहुत से लोग मिलते रहते हैं, एक्चुअली बहुत से लोगों से हम मिलते रहते हैं।
1: हाँ, मगर वो साथ चलने वाला जो एक राही मिल जाता है और हम सवर जाते हैं जीवन भर के लिए,
0: और फिर दिल कहता है लव यू जिंदगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

5:58 हुए हैं, 59 मिनट होने को है और लव यू जिंदगी को समेटने का समय हो चुका है। ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हमारे समाचार और 6:20 पर हमारी आपकी दोबारा मुलाकात होगी कार्यक्रम अंदाज हवा में। तो बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: सुन रहे आप 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो म्यूजिकली योर्स और समय हो चुका है कार्यक्रम अंदाज़े बयां का। मैं हूँ शुभांगी और मेरे साथ है
2: आरजे आदित्य।
1: आदित्य, शायरी हो या गजल हो, कविताएं हो या दोहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ना चाय की वो प्याली होती है जो चंद लफ्जों में रूह को सादगी का, सुकून का अनुभव देती है, जिंदगी का एक अलग ही रंग दिखाती है।
2: क्या बात है, बिल्कुल वो ऊर्जा तो देती है, हारे हुए को जीतने का हौसला भी देती है, और जो पहले से जीते हुए हैं उन्हें अगली जीत के लिए पांव जमी पर रखने का संदेश भी देती है।
1: तो हो जाए इस बात पर आज का इस प्रोग्राम का पहला गाना।
2: बिल्कुल।

0: किशोरदा का रोमांटिक अंदाज, क्या बात है। वैसे आप सुन रहे हैं अंदाज उदया
1: मेरे यानी आदित्य
0: और शुभांगी के साथ।
1: जी शुभांगी, एक शेर याद आ रहा है।
0: हाँ सुनाओ सुनाओ।
1: हमारी वफाएं अभी समझ में नहीं आएंगी उन्हें।
0: अच्छा अच्छा, हमारी वफाएं अभी समझ में नहीं आएंगी उन्हें।
1: वो अभी गुरूर में है कि चाहने वाले बहुत है।
0: क्या बात है।

0: सुन रहे आप अंदाज बयां, और ये क्या खूबसूरत अंदाज था बयां करने का। बेसिकली हमारे जो इमोशंस होते हैं, जो भी भावनाएं हमारी होती हैं, उनको बयां करने का अंदाज हम अंदाज बयां में लेकर आते हैं आदित्य।
1: या इसमें क्या होता है कि जैसे सुबह की चाय की प्याली बीते हुए दिन की थकावट भगाती है और शुरू होते दिन के लिए चुस्ती भरती है, उसी तरह ये गजलें, ये कविताएं नया सवेरा देती है, नई उम्मीद दिलाती है। क्यों?
0: बिल्कुल।

0: और तुम शुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी ऍट 90 निमित्तानं आकाशवाणी मुंबई आयोजित करत आहे सूर गौरव संध्या।
2: विदुषी डॉक्टर एन राजम यांच्या व्हायोलिन वादनाची आणि मुलाखतीची खास मैफल, तबला साथ पंडित मुकुंदराज देव, व्हायोलिन संगत अभिषेक सिन्हा।
1: गुरुवार दिनांक 7 मे रोजी रात्री 8 वाजता।
2: स्थळ आहे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह, दादर पश्चिम, प्रवेश विनामूल्य।
1: सर्व रसिकांना हार्दिक निमंत्रण। सूर

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं अंदाज़ एवया 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकली योर्स। अंदाज़ एवया का समय वैसे आदित्य धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा है।
2: हाँ, उससे पहले एक शेर और मैं अर्ज करता हूँ।
1: हाँ, जरूर जरूर।
2: मिलने की उम्मीद तो नहीं है तुझसे।
1: हाँ, मिलने की उम्मीद तो नहीं है तुझसे,
2: लेकिन ये कैसे कह दूं कि इंतजार नहीं।
1: ओह,
2: इसी बात पे ये गाना मैं अर्ज करता हूँ।
1: बड़ी खूबसूरत गजल
2: हमारे श्रोताओं के लिए। जी,

0: सुन रहे आप अंदाज़ भैया, जिसका समय अब ख़त्म होने को है।
1: और हमारे काफ़ी श्रोताओं ने हमें मैसेजेस भेजे हैं, जैसे कि प्रज्ञा मानकामे जी हैं डोंबिवली से, अशोक पाटिल है वर्ली से, बाद में भारती और दुर्गेश नागनपुरे हैं, महेश नाम जोशी हैं, श्रीपाद जोशी हैं, सुरेश काशीनाथ पाटिल, चंद्रशेखर मुएकर, राजेंद्र मणिराम म्हात्रे, स्मिता म्हात्रे, मंगेश म्हात्रे, राजेंद्र परमार, संजय पाटिल, शुभदा जी हैं, बाद में बाबा जी है दादर से, फिरोज सिगनपुरिया है, और पंकज मोहोड़, प्रदीप अनंत कृष्णन, राकेश माथुर, प्रणव शिंदे और कई सारे और श्रोता भी हैं।
0: काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिलता रहता है। एफएम रेनबो के सारे ये हमारे दीवाने हैं और ये अक्सर वो हमसे कहते रहते हैं, इसका जिक्र होता रहता है। वैसे अभी हमें कुछ समय के लिए रुकना होगा, ठीक 7 बजे होंगे समाचार और उसके बाद 7:10 पर हम लेकर आएंगे कार्यक्रम हम तुम, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ बिल्कुल, आज आपको फरमाइशें भेजनी है, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले रुकना है समाचारों के लिए। पर सुनते रहिए हमारे साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
2: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1।

0: आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours
1: 107.1 MHz आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई FM Rainbow और समय हो चुका है 7:10 का, यानी कार्यक्रम हम तुम का। और आज हम तुम में आपके साथ हूँ मैं शुभांगी
2: और मैं आदित्य।
1: और आदित्य, हमारे ये जो प्रोग्राम होता है वो फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम होता है। या तो हम हमारे श्रोताओं से कोई सवाल पूछते हैं या जवाब मांगते हैं, तो आज हम फरमाइशें पूछेंगे हमारे श्रोताओं से। और उसके लिए मैं नंबर बता देती हूँ, 8657661071,
2: यानी 8657661071।
1: इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर अपनी फरमाइश भेजनी है, अपना नाम भेजना है। और हाँ, जो भी गाना आप भेजेंगे प्लीज उसका अगर फिल्म का नाम भी साथ में दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम तुमका पहला गाना सुनवा देते हैं।

0: तो शुभांगी, ये जो दो गाने थे ये हमें भेजे थे राकेश माथुर जी पुणे से, और मेहर अरोरा, ममता अरोरा, कीर्ति अरोरा इनसे। तो अगले गाने की तरफ हम मुड़ते हैं।
1: बिल्कुल, इससे पहले जरा हम बता दें हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है हमारे श्रोताओं को,
0: 8657661071।
1: हमारे इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और भेजना है आपकी पसंद का गाना।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

0: सुन रहे अब हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो पर शुभांगी और आदित्य के साथ सुन रहे हो। आदित्य, ये किसकी फरमाइश थी जो अभी हमने सुनवाया?
1: ये गाना था पंकज मोहड़ जी का। आने वाले कुछ और भी गाने हैं जो कि प्रमोद चिंचोलकर जी के हैं या फिर दिग्दर्शन और कविता जी हैं, काजल कक्कड़ हैं चेंबूर से, दीपा पालकर जी हैं और कई
0: काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। और जैसे इस गाने में कहा था ना कि मौसम का जादू है मितवा, तो ये रेनबो का जादू है। रेनबो पर जो मौसम मचा जाता है ना इन गानों के साथ, ये उसका जादू होता है। वैसे आपको बता दूं कि आपको व्हाट्सएप करना है, नंबर बता दूं एक बार आपको, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको भेजना है आपकी पसंद का गाना, आपकी फरमाइश हमें भेजनी है। और एक गाना भेजकर मत रुकिएगा, जरा हमें 2-3 ऑप्शंस भी दीजिएगा, जैसे बहुत से लोग दे भी रहे हैं। तो जिनको ये पता है वो तो देते ही रहते हैं, और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूँ कि गाने जरा हमें 2-3 भेजोगे तो उनमें से जो गाना अवेलेबल होगा हमारे पास वो हम आपको सुनवा सकते हैं। सो इसके बाद हम चलते हैं अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले लेना एक छोटा सा ब्रेक।

0: ये गाने की फरमाइश थी विजेंद्र घाटोल जी की अकोला से। और अभी आगे हमारे साथ बने रहे हैं काजल कक्कड़ जी, उनकी कुछ गाने बाकी है। फिरोज सिगनपुरिया जी ग्रैंड रोड से, उनका भी एक गाना लाइनअप है।
1: इसके बाद हम मुझे ऐसा लगता है कि एक बार नंबर बता दें हमारे सारे श्रोताओं को।
0: हाँ बिल्कुल, 8657661071 8657661071।
1: ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको अपनी फरमाइशें भेजनी है। वैसे बहुत सारी फरमाइशें आ तो चुकी हैं और आ रही हैं, लगातार बारिश हो रही है बिल्कुल फरमाइशों की, तो 8 बजे तक हमें पता नहीं है कि हम कितने गाने किस किस के हम सुनवा सकेंगे। तो नाराजगी तो होगी, तो मैं ये कहूँगी सबसे गुजारिश कि प्लीज आप नाराज मत होइएगा, क्योंकि समय की सीमा तो सभी को है, तो उसके दायरे में रहते हुए जितनी भी फरमाइशें हो सकती हैं हम जरूर जरूर पूरी करने की कोशिश बस कर सकते हैं। तो हो जाए, अगली फरमाइश किसकी है?
0: ये है फिरोज सिगनपुरिया जी के लिए, DDLJ का एक बहारदार सॉन्ग।

7:54 का वक्त है, 55 मिनट होने को है और कार्यक्रम हम तुम हमारा फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम बस अब समेटने का समय आ चुका है और सिर्फ हम एक ही फरमाइश अब ले सकते हैं। आदित्य,

0: हम किसकी फरमाइश पूरी करने जा रहे हैं?
1: तो अगला गाना जो है सच कह रहा है दीवाना,
0: ये किसकी फरमाइश है?
1: ये गाना है फरमाया हुआ आशीष पवार जी ने, जो कि है झारखंड से।
0: तो इसी गाने से हम समेटने जा रहे हैं हमारे आज के हम तुम इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़े अच्छे अच्छे गाने आज आपने भेजे, और आदित्य और शुभांगी आज आपके साथ रहे 5 बजे से लेकर अभी इस महफिल के समापन तक। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। हमारा आपका साथ तो हमेशा यूं ही चलता रहेगा, बस सुनते रहिए हमारे साथ 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई FM, रेनबो म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: I'm gonna play for you my first tune tonight. Right, here goes.

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मर्दमशुमारी के पहले मरहले में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गिनती होगी। आइए आपके तावों से इसको कामयाब बनाएं और खुशहाल भारत 2047 की तरफ एक और कदम बढ़ाएं।
1: वेलकम बैक टू 107.1 FM, 36 मिनट्स पास्ट 8 PM, रीटा विद यू एंड प्लेइंग यू द समर स्टेट ऑफ माइंड। आई हैव गॉट Next is a song which became a global summer anthem when it released, and even if you didn't understand Spanish, you actually felt it, and it's one of the most streamed songs in history. It almost feels like dance floor meets a beach party kind of a vibe, you know. This is Despacito.
2: Aye.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीक

0: की साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने तथा होर्मुज जलडमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 30 में से 27 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति तोलम ने आज दोपहर गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण माहौल में व्यापक चर्चा की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए दोनों नेताओं ने भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर शांति, स्थिरता, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और नौवहन उड़ान की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विवादों का समाधान अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और बिना किसी धमकी या बल प्रयोग के शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। दोनों पक्षों ने बाजार तक पहुंच आसान बनाने पर सहमति जताई, जिसमें कृषि उत्पाद भी शामिल हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: द्विपक्षीय वार्ता के बाद संवाददाताओं को नई दिल्ली में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
3: President Tholan conveyed Vietnam's support on the issue of
4: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
3: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बातचीत में भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वियतनाम के वित्त मंत्री नो वन त्वान से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के 10 वर्ष पूरे होने का स्वागत किया। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि वियतनाम ने प्रौद्योगिकी, नवाचार, ऊर्जा और फार्मा क्षेत्रों में गहन सहयोग में अपनी रुचि व्यक्त की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका

0: फिर स्वागत है। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है।
1: आज सुबह कांग्रेस नेता गिरीश चोंडंकर और पार्टी के अन्य नेताओं ने टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय से मुलाकात कर 5 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में विदुत हलाई चिरुथिगल काची वीसी के प्रमुख थोल थिरुमाव लवन ने कहा कि उनकी पार्टी टीवीके के गठबंधन में शामिल होने के निमंत्रण पर विचार करेगी। वर्तमान में वीसीके डीएमके के साथ गठबंधन में है और इसके 2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
2: राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद बंगाल का सियासत में अब नई सरकार का शपथ ग्रहण सबसे चर्चे में है। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड से ही नए युग का शुरुआत होगी। आज नवान्न में राज्य के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के साथ लंबी बैठक के बाद बीजेपी राज्य अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित कोई राज्यों की मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ सरकार बदलने का प्रतीक नहीं है बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है। अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से।
0: इस बीच तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी ने आज कोलकाता में पार्टी के विजयी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। बैठक कालीघाट स्थित उनके आवास पर हुई जहां 80 विजयी उम्मीदवारों में से 69 उपस्थित रहे। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया था। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने एआई में तेजी से हो रही प्रगति, विशेष रूप से क्लाउड माइथोस जैसे एआई आधारित भेद्यता पहचान उपकरणों से उत्पन्न होने वाले साइबर सुरक्षा जोखिमों की जांच के लिए साइबर सुरक्षा एआई नामक एक कार्यबल का गठन किया है।
3: सेबी का कहना है कि ऐसी प्रौद्योगिकियां लाभकारी हैं लेकिन बड़े पैमाने पर साइबर जोखिम को काफी हद तक बढ़ा सकती हैं। नव गठित कार्यबल में बाजार अवसंरचना संस्थानों MII, योग्य रजिस्ट्रार और हस्तांतरण एजेंटों QRTA, विनियमित संस्थाओं और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें AI संबंधित साइबर जोखिमों का आकलन करना, एक समान राहत रणनीतियां विकसित करना, खतरे की पूर्व जानकारी साझा करने की सुविधा प्रदान करना और महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्टिंग करना शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने भारतीय नागरिकों को साइबर मानव तस्करी में धकेलने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेशों में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर भारतीय नागरिकों को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भेज रहा था।
1: CBI ने मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, काशीपुर और उत्तर प्रदेश के गोंडा और सहारनपुर जिलों सहित 4 राज्यों में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई व्यापक राष्ट्रव्यापी जांच के बाद की गई जिसमें पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। एजेंसी ने इस गिरोह में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सहित वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी। इस दौरान उन्होंने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए जिनमें महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं। तस्करी में शामिल होने के आरोप में लखनऊ से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह भारतीय नागरिकों को इन धोखाधड़ी केंद्रों में भेजने के लिए एजेंटों को रिश्वत देते थे। CBI ने लोगों को अज्ञात स्रोतों से मिलने वाले नौकरी के प्रस्तावों, विशेष रूप से सोशल मीडिया या ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से साझा किए गए प्रस्तावों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। CBI ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव खतरनाक हो सकते हैं और गंभीर परेशानी का कारण बन सकते हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी वितरण सामान्य रूप से जारी है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि सरकार घरेलू एलपीजी सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास कर रही है।
4: भारत सरकार का ये प्रयत्न है कि घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को कुकिंग के लिए 100% सप्लाई इंश्योर की जा सके और कमर्शियल को भी 70% तक देने का प्रयास किया जा रहा है। डोमेस्टिक कुकिंग एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है और लगभग 95% एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है।
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि घरेलू एलपीजी और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार कल किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब पहुंच गए हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के जाम किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्ष द्वारा होर्मुज जल डमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अघारची ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। चीन ने ईरान अमेरिका युद्ध को अवैध बताते हुए व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया। ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के साथ एक व्यापक समझौता चाहता है और अमेरिका के 14 सूत्रीय प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। इस बीच ईरान ने संकेत दिया है कि खतरा कम होने पर होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित के लिए फिर खोला जा सकता है। संभावित समझौते की खबरों के बाद ब्रेंड कच्चे तेल की कीमतें 8% से अधिक गिरकर लगभग $100 प्रति बैरल पर आ गई हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में भी तेजी देखी गई है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कैरेबियन देशों की अपनी आधिकारिक यात्रा पर सूरीनाम पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने महात्मा गांधी और बाबा तथा माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जो सूरीनाम आने वाले पहले हिंदुस्तानियों के प्रतीक हैं। और अब खेल खबरें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम है। भारत के युवा मुक्केबाजों ने आज अंडर 15 वर्ग में 30 में से 27 पदक पक्के कर आधिकारिक तौर पर अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है। अंडर 15 लड़कियों ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं। वहीं अंडर 15 लड़कों ने भी 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 19वें ओवर में 3 विकेट पर 217 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वियतनाम व्यापार, निवेश और तकनीकी साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत यात्रा पर आए वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने दोनों देशों की साझा विरासत को सजोने के लिए कई उपायों की घोषणा की। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। अमेरिका और ईरान के संघर्ष समाप्त करने और होर्मुज जल डमरू मध्य से सुचारू आवागमन पर समझौते के करीब पहुंचने की खबरें। और भारतीय मुक्केबाजों ने ताशकंद में अंडर 15 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 30 में से 27 पदक पक्के किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. India and Vietnam agree to enhance trade, investment and technological partnership. Prime Minister Narendra Modi and visiting Vietnamese President Tho Lam announce several measures to keep shared heritage of the two countries alive. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu. Swearing-in ceremony of BJP government in West Bengal to be held on Saturday at Brigade Parade Ground in Kolkata. US and Iran reported to be close to an agreement to end conflict and relax movement through Strait of Hormuz. And Indian boxers ensure 27 out of 30 medals at Asian Boxing Under 15 Championships in Tashkent. India and Vietnam have signed multiple agreements in areas including digital technology, rare earths, medical regulation, public sector audit, digital payments and culture and tourism. The MOUs were inked after talks between Prime Minister Narendra Modi and Vietnamese President Tho Lam in New Delhi. In a joint statement, Prime Minister Modi announced that both nations have decided to elevate their ties to an enhanced comprehensive strategic partnership following wide-ranging discussions.
7: Culture, connectivity aur capacity building ke saath saath security, sustainability aur supply chain resilience हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
6: The Prime Minister said to keep the shared heritage alive, India is restoring the Mai Son and Nhan Tao temples of Vietnam's ancient Champa civilization.
7: भारत और वियतनाम की साझेदारी में विरासत और विकास दोनों का महत्व है। हमारी साझा विरासत को जीवंत रखने के लिए हम वियतनाम के प्राचीन चंपा सभ्यता के मी सोन और नान टावर मंदिरों का रेस्टोरेशन कर रहे हैं। अब हम चंपा सभ्यता की मैन्युस्क्रिप्ट को डिजिटलाइज करेंगे।
6: President Tho Lam said Vietnam attaches great importance to the outcome of 50 years of relations with India as well as 10 years of the comprehensive strategic partnership. Briefing the media after bilateral talks between Prime Minister Modi and the Vietnamese President, Secretary East in the Ministry of External Affairs, P. Kumaran, said both countries agreed to reinforce cooperation at the level of governments and businesses for increasing two-way trade, investment and technological partnership. He said Mr. Modi and Mr. Lam held wide-ranging discussions and reviewed the entire gamut of bilateral relations, exchanging views on regional and global issues of mutual interest.
8: Prime Minister Modi and President Tho Lam acknowledged the growing threats of terrorism, transnational crime, money laundering and online scams. President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of terrorism and counter-terror cooperation and Prime Minister thanked Vietnam for their strong support on the Pahalgam attack. There was convergence of views on several regional and global issues of interest to both sides, particularly in the Indo-Pacific and the importance of closer cooperation to promote peace, stability and prosperity in the region and beyond.
6: Acknowledging the advancements made by the Indian pharmaceutical industry, the two sides agreed to explore ways for the potential participation of Indian companies in the procurement of medicines for Vietnamese public health care facilities from 2027. Both the leaders also reaffirmed that defense and security cooperation is a key pillar of the India and Vietnam comprehensive strategic partnership. Our correspondent reports India and Vietnam have agreed on a new trade goal of $25 billion by 2030.
9: Prime Minister Narendra Modi and President Tolam held wide-ranging discussions this afternoon in a warm and cordial atmosphere. They reviewed the entire gamut of bilateral relations and exchanged views on regional and global issues of mutual interest. Acknowledging the evolving global geopolitical and economic landscape, the leaders underscored the growing strategic convergence between India and Vietnam to promote international order based on international law, grounded in peace, stability, cooperation, and prosperity in the region and beyond. Both leaders reaffirmed the importance of maintaining peace, stability, security, and freedom of navigation and overflight in the South China Sea while pursuing the peaceful resolution of disputes in accordance with international law without resorting to threat or use of force. They decided that both sides will facilitate market access, including for agricultural products. They welcomed the decision to grant market access for Indian grapes and Vietnamese durians. They also agreed to expedite market access for Indian pomegranates and Vietnamese pomelos. The leaders agreed that the ongoing review of the ASEAN-India Trade in Goods Agreement, ETIGA, should be concluded at the earliest. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
6: Union Ministers Rajnath Singh and Nirmala Sitharaman met their Vietnamese counterparts in New Delhi today. In a social media post, Mr. Singh said India cherishes the long-standing ties with Vietnam. He added that the talks with the Deputy Prime Minister and Defence Minister of Vietnam, General Phan Van Giang, focused on adding more vigour to the defence cooperation between India and Vietnam. Mr. Singh added that he looks forward to further deepening strategic partnership. In a social media post, Ms. Sitharaman appreciated Vietnam's strong macroeconomic management and ongoing institutional reforms reflected in its improved credit outlook and rising competitiveness, enhancing resilience and integration into global value chains. Mr. Thuan also appreciated India's strong macroeconomic leadership and expressed keen interest in learning from India's experience, particularly tax reforms, development of MSMEs, and the role of public investment in driving growth. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You are with us on the news at 9. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar and staked claim to form the new government in the state. The 51-year-old leader met the governor along with senior leaders of the party. TVK has approached other parties also as it is short of the majority mark by 11 seats. Vijay, who contested from two constituencies, will have to vacate one seat. Meanwhile, the Congress, having five MLAs, took the decision to support the TVK and met Vijay and offered the letter of support today. The party left its long-time ally, the DMK. We have more from our correspondent.
10: It was a day of political heat in the state, even as there was waiting for confirmation from various political circles and the first step towards formation of the new government. The single largest party, Tamilaga Vetri Kalagam, had 108 assembly seats and has added 5 seats with Congress in the fold. TVK has also invited BCK and the left party CPI and CPM. The AIADMK also had a meeting today evening under the leadership of party's General Secretary Edappadi Palaniswami. Speaking to the media after the meeting, KP Munasami, the Deputy General Secretary of the party, dismissed that there was discontent inside the party on the issue of supporting TVK. He categorically stated that the party will not support TVK. The governor has dismissed the 16th assembly today, which has cleared the way for the formation of a new government. The TVK chief has to present the support letter of parties to form a majority and a new government. He has already sought 2 weeks' time to prove it. The wait and the search for support continues in the formation of a new government. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
6: The swearing-in ceremony of the new BJP government in West Bengal will be held on the 9th of this month at Brigade Parade Ground in Kolkata. Our correspondent reports, preparations within the state administration have reached a peak following the declaration of the election results and ahead of the swearing-in of the new government.
11: 25th Boishakh in the Bengali calendar is an auspicious day as it marks the birth anniversary of Kovi Guru Rabindranath Tagore. The new Chief Minister and the Cabinet will take the oath on this day, which falls on Saturday, May 9. The program will be organized at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and Chief Ministers of other BJP-ruled states are expected to be present on the occasion. The swearing-in ceremony will take place in the morning. For security arrangements and other related matters, high-level administrative meetings are being held. Kollan Laha, reporting from Kolkata.
6: In Assam, Chief Minister Dr. Hemanta Biswa Sarma today tendered his resignation to Governor Lakshman Prasad Acharya at the Lok Bhavan in Guwahati following the completion of the assembly election process. The resignation has paved the way for the formation of a new government in the state after the declaration of results. Speaking to media later, Dr. Sharma said the governor

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: वेलकम बैक टू 107.1 एफएम, 15 मिनट्स पास्ट 9 PM एंड रीटा विथ यू। दिस ऑफ कोर्स इज द टाइम ऑफ द डे व्हेन वी प्ले योर रिक्वेस्ट्स एंड वेल आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट्स दैट हैव बीन लाइंड अप एंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर यू नो स्टिल थिंकिंग व्हाट दे'ड लाइक टू लिसन इन यू नो यू कैन सेंड मी योर रिक्वेस्ट ऑन 8657661071. A few options.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने आज डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
2: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
0: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और आज मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा।

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 10 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 4 मई को हुई बैठक में अधिवक्ताओं के नामों को न्यायाधीश के रूप में अनुमोदित किया गया। वहीं कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 न्यायिक अधिकारियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान कल जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये सम्मेलन साइबर, अंतरिक्ष और कॉग्निटिव वॉरफेयर जैसे उभरते क्षेत्रों में मौजूद चुनौतियों का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। साथ ही ये सशक्त और भविष्य के लिए तैयार सेना के निर्माण की आधारशिला रखेगा। इस सम्मेलन में आंतरिक रूप से विकसित भविष्योन्मुखी तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स के सामने 236 रन का लक्ष्य रखा। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 187 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम रंग की महफिल में। जी हाँ, प्रोग्राम का नाम बदला है, ना आप बदले हैं ना मैं बदली हूँ। जी हाँ, आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि इस प्यारे से सफर में जो गजलों और गीतों का प्रोग्राम है, इसमें आप और हम रहेंगे साथ साथ। जी हाँ, फिर हूँ हाजिर आपकी अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी लेकर आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है रंगे महफिल। तो चलिए एक खूबसूरत गजल से अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सच कहा है, सही कहा है। दिन हुआ है तो रात भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, मत हो उदास उससे कभी बात भी होगी, वो प्यार ही इतना प्यारा है, जिंदगी रही तो उससे फिर मुलाकात भी जरूर होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल।

जी हाँ दोस्तों, दूरियां कितनी भी बढ़ जाएं, कितने भी दिन महीने साल बीत जाएं, अगर दिल से इश्क है, प्यार है, मोहब्बत है, तो दूरियां मायने नहीं रखती। ना तो वो इश्क प्यार कम होता है और ना ही उसे देखने की चाहत कम होती है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, नमस्ते मैडम जी, कहाँ थी अभी तक आप? बहुत दिनों के बाद आवाज़ सुनाई दी, वरुण इंदौर से। तो वरुण जी, शायद आपने 9 बजे का प्रोग्राम नहीं सुना है, मैं 9 बजे के प्रोग्राम में थी। और रही बात बहुत दिनों की, तो हाँ, जब हम किसी से इतना लगाव रखते हैं ना और उसे सुनना अच्छा लगता है, तो फिर कुछ दिन भी हमें बहुत दिन समझ में आते हैं। तो मैसेज करने के लिए थैंक यू। और एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने सिर्फ ये लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी रेखा जी टू हियर यू अगेन, थैंक यू सो मच। और इन्होंने अपना नाम लिखा है एम राजकुमार, तो और ये हमें ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं। तो देखिए, मैंने कहा था ना कितना आसान है, कितना इजी है, आप हमें ऐप के ज़रिए कभी भी कहीं भी सुन सकते हैं और उसमें हेडफोन वगैरह की भी कोई झंझट नहीं है। कई बार क्या होता था कि हमारे पास हेडफोन नहीं होता था तो हमें कुछ चीज़ें सुनने में दिक्कत आती थी, लेकिन किंतु परंतु अब ऐसा नहीं है। पंकज का अमरावती महाराष्ट्र से लिखते हैं, शुभरात्रि रेखा मैडम जी, वेलकम बैक टू योर शो मैडम जी, कार्यक्रम रंगे महफिल आरजे मैडम जी, आज मेरा जन्मदिन है, दिन हुआ तो रात भी होगी, हो उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा जो मैंने अभी चलाया। मैडम जी, किसी को तेरा इंतज़ार आज भी है, ये गीत भी बहुत प्यारा गीत है और आज मेरा जन्मदिन है। तो भाई, जो आप ये जी जी जी जी लगाते हैं ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और रही बात ये आपके जन्मदिन की, तो आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जी हाँ, आप यूं ही खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, बस यही यही दुआ करते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, ये आया है मुंबई अंधेरी वेस्ट से, कनक दीक्षित का, वो भी हमें सुन रहे हैं और उन्हें भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। एक और मेरे पास मैसेज है, भाई देखिए, अब तो आप ना मुझे नाराज़ करने वाले हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब आप अपना कोई भी मैसेज भेजिए हमें, तब उसमें अपना नाम और जहाँ से भेज रहे हैं उस जगह का नाम ज़रूर भेजें। तो प्लीज़ दोस्तों, नाराज़ मत कीजिए अपनी दोस्त को। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं नाराज़ कभी होती नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कभी तो नाराज़ हुआ जाए। तेरे बिना जिंदगी अब लगती अधूरी सी है, तेरे बिना जिंदगी अब लगती अधूरी सी है, साथ मिले जो तेरा हर शाम सिंदूरी बन जाए। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और ये प्यारा सा सॉन्ग आप सबके लिए है।

कितना अच्छा लगता है ना जब हम सब कुछ भूलकर अपने सॉन्ग सुनते हैं या गजलें सुनते हैं या ये कह लीजिए कोई भी अपनी मनपसंद चीज़ करते हैं, चाहे वो गीत संगीत हो या डांस हो या कुछ भी, क्योंकि यही वक्त होता है जो सिर्फ और सिर्फ हमारा हमारा होता है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मैं बहुत दिनों के बाद सुन रही हूँ, लेकिन दोस्त आपने फिर से अपना नाम नहीं लिखा है। एक और मेरे पास मैसेज आया है, अरे अरे अरे ये कैसा मैसेज है, देखिए यहाँ तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो रही है। वो लिखते हैं कहीं आप हमारी रेखा जी तो नहीं हो, देखिए इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, किंतु परंतु आप हमें भूलती जा रही हैं, क्या यही आपका प्यार है। और उन्होंने एक गाने की फरमाइश भी कर दी है। तो भाई देखिए मैं कभी भी अपने लिसनर्स को भूलती नहीं हूँ, और रही बात आपकी फरमाइश की, तो आप जानते ही हैं कि ये हमारा फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, तो फरमाइशें नहीं ली जा सकती। फिर भी कोशिश करती हूँ, अगर आपका ये सॉन्ग हमारी इस प्रोग्राम से तालमेल खाता होगा तो ज़रूर कोशिश करूँगी। एक और मेरे पास मैसेज है, वो उन्होंने लिखा है पंकज अमरावती से लिखते हैं, थैंक यू सो मच रेखा मैडम जी, आपने मेरा मैसेज लिया। तो भाई देखिए मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आप सभी के मैसेजेस लेने की कोशिश करती हूँ। और एक हमारे कोई शायद नए लिसनर हैं, तो दोस्त आपको मैं बता दूँ, शायद आप नए हैं और आपने बाद में लिखा है, हाय रेखा गुड इवनिंग, लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ थी आप, मिस्ड यू अ लॉट, जय जयंत लिखते हैं पटना से। तो जयंत जी शायद आपने ही अभी कुछ भेजने की कोशिश की थी, मेरा मतलब है कि वीडियो भेजने की कोशिश की थी जो यहाँ पर ओपन नहीं हो सकती है। एक सिस्टम है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके मैसेजेस लिए जा सकते हैं, बाकी आप कुछ भेजने की कोशिश करें तो हाँ पता लगता है कि आप वीडियो भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किंतु परंतु उसे हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, स्माइली भेजिए, अपने मैसेजेस भेजिए और प्यारे प्यारे गीतों को एंजॉय कीजिए, गजलों को एंजॉय कीजिए। अल्फाजों को समेटे हुए रखना, लफ्जों में बात बिल्कुल भी ना करना, जो कहना हो कह देना अपनी आंखों के जरिए, जो कहना हो कह देना अपनी आंखों के जरिए, तुम अपनी हर बात को हमने ये भाषा भी सीख ली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए।

जी हाँ दोस्तों, आपके मैसेजेस लगातार मुझ तक पहुंच रहे हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं, जी हाँ जानता हूँ कि ये प्रोग्राम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है। पहले उन्होंने ये लाइन लिख दी है, वरुण जी, और आगे लिख रहे हैं अपनी फरमाइश। तो चलिए वरुण जी, कोशिश रहेगी, लेकिन किंतु परंतु वादा नहीं करूंगी, क्योंकि कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाया करती हैं और वादे टूटकर बिखर जाया करते हैं। एक और मेरे पास मैसेज आया है, उन्होंने धन्यवाद लिखा है, लेकिन किंतु परंतु मुझे समझ में बात ये नहीं आ रही है कि आप अपना नाम लिखकर क्यों नहीं भेज रहे हैं। उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हैं, लेकिन अपना नाम नहीं लिखकर भेज रहे हैं। और आगे उन्होंने थैंक यू लिख दिया है। कमाल है भाई, आप तो कहाँ से लिख रहे हैं, कौन लिख रहे हैं, कुछ तो बताइए। एक और मेरे पास मैसेज आया है अब क्या करूं, मैं पहले हंस लेती हूं। फिलहाल के लिए मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूं, अपनी थोड़ी सी हंसी को रोकने की कोशिश करती हूं और फिर ये मैसेज पढ़ लेती हूं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल। जी हाँ, याद दिला दूं आपको कि प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, और आप हमें सुन सकते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दिल्ली और NCR में, और पूरे भारत में हम जुड़े हैं आपसे अलग अलग जगहों पर, अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर, और ऐप के जरिए भी आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक दोस्तों, जानते हूँ आपके मैसेजेस के ज़रिए पता चल रहा है कि हमारा प्रोग्राम आपको कितना पसंद आ रहा है और बहुत से दिल जोरों से धड़कने लगे होंगे, कुछ नींदें कोसों दूर भाग चुकी होंगी। पर दोस्तों, कभी कभी दिलों को जोरों से धड़क लेना चाहिए और धड़कने देना भी चाहिए, और अगर नींद उड़ गई है तो उसमें फिक्र की कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी नींदें उड़ना भी अच्छी बात होती है। तो चलिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, और इस गीत को सुनने पर ये धड़कनें और भी तेज होंगी। ज़रा सुनिएगा अपनी धड़कनों को कानों के जरिए, और ये गीत वाकई बहुत ही खूबसूरत है, जो कानों के जरिए उतरकर दिल में मिश्री सी घोलेगा और आपको कुछ कहने पर जरूर जरूर मजबूर करेगा।

जी हाँ दोस्तों, जानती हूँ कि अब दिल थोड़ा और ज़ोरों से धड़कने लगा होगा और जो अरमान सोए थे वो जाग चुके होंगे और दिल की रफ्तार और तेज हो चुकी होगी। जी हाँ, दिल की गाड़ी में प्यार के पहिए कब कहाँ कैसे लग जाए किसी को कुछ नहीं पता और कहाँ फिट हो जाए ये भी खुद हम नहीं जानते। और अरमान अगर आपके जाग चुके हैं तो ईंधन खुद ब खुद मोहब्बत का मिल ही जाता है और ये गाड़ी फिर चलती नहीं जनाब, ये तो दौड़ती है बहुत जोरों से, पूरी रफ्तार से। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं आपके साथ, आपके पास। बने रहिए हमारे साथ।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

वेलकम बैक दोस्तों, आपके ढेर सारे मैसेजेस आ चुके हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले ये मैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि किसी की नाराज़गी को दूर करना ना बहुत अच्छी बात होती है। तो भाई ये मैसेज मेरे पास आया है जफर अर्तुक का, फरहान अंजुम एंड अरीबा सलमान फ्रॉम पूर्णा बिहार से। तो मेरा दोस्त मुझसे, फरहान मुझसे नाराज़ है, कृपया उसको बोल दीजिए कि मैं उसको सॉरी बोल रहा हूँ और उसको मनाने में मेरी मदद कीजिए। तो भाई अगर आप सुन रहे हैं, आपके दोस्त सुन रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि भाई आपस में ये सब चलता रहता है दोस्तों, और जब दोस्ती अगर सिर्फ और सिर्फ प्यार प्यार प्यार से चलती रहे तो फिर मज़ा थोड़ा सा किरकिरा लगने लगता है। तो दोस्ती में थोड़ी सी नोक झोंक होनी बेहद ज़रूरी होती है, एक दूसरे को मनाना भी ज़रूरी होता है। हाँ, लेकिन अगर रूठे हैं तो मान भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमेशा रूठे ही रहें, क्योंकि वक्त निकलने के बाद ना दोस्तों एक दूसरे की बहुत बहुत बहुत याद आती है। और फिर आप यही कहेंगे कि दिमाग अगर प्रिंटर होता तो ख्यालों के प्रिंटआउट निकाल लेते हम, दिमाग अगर प्रिंटर होता तो ख्यालों के प्रिंटआउट निकाल लेते हम, मन अगर ब्लूटूथ होता तो भावनाओं को ट्रांसफर कर देते हम, धड़कन अगर पेन ड्राइव होती तो जिंदगी का बैकअप ले लेते हम, जिंदगी अगर कंप्यूटर होती तो बीते हुए खूबसूरत पलों को रीस्टार्ट कर लेते हम। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि नाराज़गी इतनी लंबी रखें कि दूसरा भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि दोस्ती रखें या ना रखें। राजेश शर्मा जी का मेरे पास मैसेज आया, वो लिखते हैं कि इतने लंबे समय तक कहाँ गायब हो जाती हो, हवाई जहाज लेकर कहीं उड़ जाती हो क्या? बिल्कुल नहीं जनाब, मैं तो यहीं रहती हूँ, आपके आसपास रहती हूँ और आप का इंतज़ार करती हूँ कि कब आपके मैसेजेस आएंगे और मैं कब स्टूडियो में आऊँगी और कब मैं अपना प्रोग्राम करूँगी आपसे, कब मैसेजेस के ज़रिए मुलाकात होगी। एक और मेरे पास मैसेज आया है, वो लिखते हैं तहे दिल से शुक्रिया। इन्होंने भी एक सॉन्ग की फरमाइश कर डाली है और वो जानते हैं कि ये फरमाइश करना, जी हाँ, बेकार है, क्योंकि टिक टिक करती घड़ी काफ़ी कुछ कह रही है। जिस तरह से मुट्ठी में रेत को हम नहीं पकड़ सकते, उसी तरह टिक टिक करती घड़ी जो है वो हमें बहुत कुछ कह रही है। और टिक टिक करती घड़ी जब कुछ कहती है तो मान लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए और समझना तो बहुत ज़रूरी है। सुनते रहिए आकाशवाणी का रेनबो चैनल और ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सबकी नज़र।

0: जी हाँ, एक हमारे लिसनर हैं, वो लिखते हैं कि काश काश ऐसा होता कि जब भी मैं एफएम रेनबो खोलूं और तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे। आप क्या चाहते हैं, बच्चे की जान लेंगे क्या? 24 घंटे कोई बोल सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं बोल सकता, पर हाँ कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आने की और आपके मेल्स हमारे रेनबो तक ज़रूर पहुँच जाते हैं। और मुझे समझ में आता है कि आप, जी हाँ, कितना कितना बेताबी से इंतज़ार करते हैं मेरे प्रोग्राम का। एक और मेरे पास मैसेज आया है, अनीता मुक्ति सिमरन अनीता मुखी सुदर्शन मुखी सिमरन मुखी फ्रॉम शांतिनगर सोनीपत से, उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए, मैं चाहती थी कि आपका ये मैसेज मैं ले लूं, तो चलते चलते बस यही कहूंगी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये एफएम रेनबो सुनते रहिए। फिलहाल अपनी दोस्त आरसी यानी रेखा चौधरी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात जरूर होगी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं किसी मोड पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: और चलते चलते ये खूबसूरत सॉन्ग आप सबके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया।
2: President Tho Lam conveyed Vietnam's support on the issue of
3: वियतनाम के राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ सहयोग के मुद्दे पर समर्थन का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले पर मजबूत समर्थन के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में दोनों पक्षों के विचारों में समानता रही। बदलते वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए दोनों

0: देशों ने शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के महत्व पर बल दिया।
1: ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप।
2: श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों सहित विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित हो रहा है। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासेन ने 69 और ईशान किशन ने 55 रन की पारियां खेली जिसके जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोहली ने 107 रन की पारी खेली। पैट कमिंस को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और आनंद लीजिए इन प्यारे प्यारे गीतों का।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट।

जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा, सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भारतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा।

सितारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

पुराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। द्विपक्षीय वार्ता के बाद नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्रों के सचिव पी कुमारन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने के लिए वियतनाम का आभार व्यक्त किया। श्री कुमारन ने कहा कि दोनों देश अपने अपने देशों में कृषि उत्पादों पर विभिन्न बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति को लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया

समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। श्री भट्टाचार्य ने बताया कि इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दीं। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर 2 दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा से बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है, जबकि अमरीका प्रतिबंधों में ढील देगा और अरबों डॉलर के फ्रीज किए हुए ईरानी कोष को जारी करेगा। दोनों पक्षों द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आवागमन पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दिए जाने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: शुरू हुई है
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पादन विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान होगा। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC की प्रगति की समीक्षा की। NMHC का निर्माण गुजरात के लोथल में चल रहा है। ये भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और समुद्रों के साथ उसके सभ्यागत जुड़ाव को प्रदर्शित करने की एक ऐतिहासिक पहल है। श्री सोनोवाल ने इस परियोजना के पहले चरण को पूरा करने के लिए इस साल जुलाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ईरान के पास गल्फ ऑफ स्ट्रेट में स्थिति की भी समीक्षा की और भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन

और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में आज शामिल होंगे। नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर दो दिवसीय ये सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउबाज के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। इस घटना के संबंध में ईरानी अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 42 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने।

रामकथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान देगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशगम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवी के को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्यग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी

संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और करैकल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी ऐसी ही स्थिति रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर टाइम हुआ है आधी रात के 3:06 और जैसे कि आप सुन ही रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक और अब मिडनाइट मेलोडीज शो में आप सुनेंगे नॉनस्टॉप हिट म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं अल्तमश फरीदी की आवाज में इस गाने के साथ।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं मिडनाइट मेलोडीज। आधी रात के 3:36 हुए हैं और ऐसे ही नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक का मजा लेते रहिए।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और शो का नाम है मिडनाइट मेलोडीज। आधी रात के 3:56 हुए हैं और अब इस शो का ये लास्ट गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ मृदा तत्व, चिकित्सा उत्पाद विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद कल ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।
1: आज हम अपने संबंधों को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माइसोन और नहान ताऊ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति का स्वागत किया। उन्होंने श्री तो लाम के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि भारत वियतनाम संबंधों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी से न केवल द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ये क्षेत्र में शांति और समृद्धि में भी योगदान करेगा। पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बताया कि समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बिहार में आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। समारोह दोपहर 12:10 पर शुरू होगा। वहीं तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कशघम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की है। टीवी के पार्टी ने सरकार बनाने के लिए समर्थन की आवश्यकता को देखते हुए अन्य दलों से संपर्क किया है। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार विजय से मुलाकात कर उन्हें समर्थन पत्र सौंपा। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की उत्तरी 24 परगना के मध्य ग्राम स्थित दोहरिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाशों ने उनकी कार का पीछा किया और उन पर गोलियां चला दी। चंद्रनाथ को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमेरिका की सेना ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में ईरान के झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोककर उसे निष्क्रिय कर दिया है। आरोप है कि इस टैंकर ने अमेरिका द्वारा लागू समुद्री नाकेबंदी को तोड़ने और ईरान के बंदरगाह की ओर जाने की कोशिश की थी। मध्यस्थों का कहना है कि अमेरिका और ईरान खाड़ी संघर्ष को समाप्त करने वाले प्रारंभिक समझौते के करीब हैं। वार्ता से परिचित सूत्रों के अनुसार दोनों पक्ष एक पृष्ठ के 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर काम कर रहे हैं। प्रस्तावित समझौते में ईरान द्वारा परमाणु संवर्धन रोकने की सहमति शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पारामारिवो में सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बोवा के साथ बातचीत की। इस मौके पर भारत और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तत्वाधान में भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने व्यापार, निवेश, रक्षा और ऊर्जा, विकास, सहायता और क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य और आवाजाही, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान जैसे विषयों पर चर्चा की। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को कल 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना लखनऊ सुपर जॉयंट्स से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:06 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक आप सुन ही रहे हैं। और अब शुरू होता है सारेगामा, जिसमें अब आप सुनेंगे बिना रुके गाने। और शुरुआत करते हैं यादें मूवी से हरिहरन की आवाज में इस गाने के साथ, तो बस गाने सुनते रहिए और झूमते रहिए।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
1: आज की रात मजा,
0: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में आपने रुस्तम मूवी का एक गाना सुना। ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। सुबह के 4:54 हुए हैं। सारे गवा शो सुन रहे हैं आप और इस शो का ये आखिरी गाना और फिर सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे।